सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई साल 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 39 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ, और एफएम शिमला पर आइए दिन की शुरुआत करते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि के साथ।

लोमश ऋषि के शाप से ब्राह्मण शरीर धारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष, कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह, अनुराधा पौडवाल और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। और आइए सुनते हैं देश गान।

0: और एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। इन चुनावों के लिए 69% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए मतों की गिनती देर शाम तक जारी रही और चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नगर निगमों के चुनाव नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में मंडी और पालमपुर में सबसे अधिक करीब 69% मतदान दर्ज किया गया। इस तरह धर्मशाला में करीब 60%, जबकि सोलन में 58% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। रोहड़ू के दलगांव पंचायत में चुनाव चिन्ह आवंटन में नियमों की अनदेखी पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने सहायक निर्वाचन अधिकारी रजनीश चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में जांच के दौरान पाया गया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी और बगड़ा थाच में पार्टी समर्थित जिला परिषद सदस्य के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी जिला परिषद वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत होगी। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
2: जन शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। 7 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पर आप हैं एफएम शिमला के साथ और आइए अब सुनते हैं एफएम शिमला पर चिंतन।

भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि से विद्या अध्ययन किया था। संदीपनी उनके विद्या गुरु थे। वे संदीपनी ऋषि जब बाल्यावस्था में अपने गुरु के पास पढ़ते थे तब उन्होंने गुरु की बहुत सेवा की थी। सभी विद्यार्थियों में संदीपनी की गुरु भक्ति विशेष थी। एक बार गुरु के मन में संदीपनी की परीक्षा लेने की आई। एक दिन विद्यार्थी बाहर गए हुए थे। गुरु का एक बालक था जो वहां खेल रहा था। जब गुरु ने विद्यार्थियों को आते हुए देखा तब उन्होंने अपने बालक की ओर संकेत करते हुए संदीपनी से कहा कि इसको कुएं में डाल दे। संदीपनी ने बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। विद्यार्थियों ने देखा तो वे दौड़ते हुए आए कि अरे, इसने गुरुजी के बालक को कुएं में डाल दिया। कुएं का जल नजदीक ही था। विद्यार्थी उसमें कूदे और बालक को उठाकर ले आए। अब विद्यार्थी संदीपनी को मारने लगे। संदीपनी ने उनकी मार सह ली पर यह नहीं बोले कि गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका कि इसे मत मारो, तुम्हारा गुरु भाई है। एक दिन की बात है, विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देखकर गुरुजी ने संदीपनी से कहा कि इस छप्पर को आग लगा दे। संदीपनी ने चट आग लगा दी। विद्यार्थियों ने दौड़कर आग बुझाई और गुरुजी के घर को जलता देख संदीपनी को मारने लगे। संदीपनी कुछ नहीं बोले, चुपचाप मार सहते रहे। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका। संदीपनी विशेष बुद्धिमान भी नहीं थे और जड़ बुद्धि भी नहीं थे, मध्यम बुद्धि के थे। परंतु उनमें यह विशेषता थी कि गुरुजी जो आज्ञा देते थे वो चट काम कर देते थे। श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करने से उनकी शक्ति हम में आ जाती है, परंतु वो शक्ति तब आती है जब उनकी आज्ञा के अनुसार हम तत्काल काम कर दें। आज्ञा पालन में जितनी देर होगी उतनी ही शक्ति क्षीण होती जाएगी। इसलिए संदीपनी अपने गुरुजी की आज्ञा को नीचे नहीं गिरने देते थे, अर्थात उस पर विचार किए बिना तत्काल वो कार्य कर देते थे। जब विद्याध्ययन समाप्त हुआ तब विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उनमें से कई अच्छे पंडित बन गए। संदीपनी भी चले गए। एक दिन गुरु महाराज बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर शिष्य लोग उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को वस्तुएं दी। उन्होंने किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्री दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी, आदि आदि। शिष्यों ने उन वस्तुओं को बड़े आदर से लिया कि गुरुजी महाराज की प्रसादी है। जब संदीपनी गुरु के सामने आए तो गुरुजी चुप हो गए। फिर बोले, बेटा तुझे क्या दूं? तुझे देने योग्य मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। तेरी जो गुरु भक्ति है उसके समान मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, त्रिलोकीनाथ भगवान तेरे शिष्य बनेंगे। बाद में इन्हीं संदीपनी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण इनके शिष्य बने।

0: एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक स्वर डॉक्टर हुकुम शर्मा की थी। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। और अब समय है आपको ये बताने का कि आज एफएम शिमला से आप कौन कौन से कार्यक्रमों को और किस समय पर सुन सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। विषय है यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिला व उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना और हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योजना। विशेषज्ञ रहेंगे श्री आर मेहुल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। जी हाँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला से जो आज के विशेषज्ञ है वो इस प्रोग्राम में रहेंगे। और इसके अलावा सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, विषय रहेगा हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर, और वार्ताकार रहेंगे सुदर्शन वशिष्ठ। इसके अलावा आपसे थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला 7:15 पर। सुबह 8:32 पर सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। देश और दुनिया की हर एक जानकारी आपको मिलेगी समाचारों के माध्यम से, और ये समाचार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में। और ये समाचार आप सुन सकते हैं दोपहर 12:10 पर, 12 बजे, 1 बजे से 1:10 के मध्य, दिन में 2:15 पर, 7:05 पर, रात 8:45 पर और 9:15 पर, और 11 बजे से 11:10 तक। इसके अलावा आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, 6:30 और 7:45 पर। और एफएम शिमला से सुनेगा एफएम न्यूज़ हेडलाइंस, जो कि आप सुन सकते हैं सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर। कुछ नए और कुछ पुराने फिल्मी गीतों के साथ हाजिर होंगे फिल्म संगीत में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 12:10 पर, दोपहर 3:10 पर और 4 बजे स्थानीय सूचना के साथ साथ आप फिल्मी गीतों का आनंद भी उठा सकते हैं, और शाम 8:30 पर। सुबह 11:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ी संगीत कार्यक्रम, दिन में 2:30 पर आज आप सुनेंगे शिखरों के स्वर कार्यक्रम, और 3:05 पर सुनेगा सामयिक चर्चा। सुबह 9:30 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा, दोपहर 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, ये प्रोग्राम सुन पाएंगे आप दोपहर 1:10 से 2 बजे के मध्य, और 2 बजे आनंद लीजिए सब रंग कार्यक्रम का। और युवा दोस्त सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम दोपहर 3:30 पर। शाम 8 बजे भूले बिसरे गीत, एक फिल्म से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे रात 9:15 पर, 9:30 पर दिल की आवाज़ भी सुन, 10 बजे सुनिए दिलकश गज़लें, और 10:30 पर आनंद लीजिए कुछ सदाबहार नगमों का, सदाबहार नगमे कार्यक्रम में।

और हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे चंबियाली कार्यक्रम 4:20 पर, 4:50 का समय रहेगा मंडियाली कार्यक्रम का, और पंगवाली कार्यक्रम सुनेगा 5:20 पर, 6:06 पर महाश्वी कार्यक्रम, और 6:35 पर आप सुनेंगे कुल्लवी कार्यक्रम।

0: तो ये वो कार्यक्रम है जो आज आप सुनेंगे एफएम शिमला पर, और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए एफएम शिमला।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
0: और एफएम शिमला पर अब आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।

कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि सब कुछ बिखरा होने के बावजूद भी उम्मीद बाकी रहती है। एक सुकून, एक एहसास जो दिल को ये यकीन दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद राहें फिर आसान हो ही जाती है। और ख़ास करके इस भागती हुई दुनिया में अगर हम बात करें और कुछ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो है अपनों की मोहब्बत, उनके चेहरे की मुस्कुराहट और दिल का

0: इत्मीनान। तो चलिए फिर आज मंडे की शुरुआत कुछ अच्छी बातों, पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं, ताकि हमारा पूरा हफ्ता सिर्फ बीते नहीं बल्कि हम इसे खूबसूरती के साथ जिएं। कार्यक्रम है आपका अपना गुड मॉर्निंग शिमला, और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट टिम्पल ठाकुर।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और कार्यक्रम में अब समय है इतिहास के पन्नों को टटोलने का। जी हाँ, हमारे इतिहास में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई, इस बारे में चलिए आपको जानकारी दे देते हैं। आज का दिन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में बहुत खास है। ईयर 1974 में 18 मई के दिन ही भारत दुनिया के सामने परमाणु महाशक्ति के रूप में उभरा था। राजस्थान के पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण कर ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत परमाणु संपन्न देशों की कतार में शामिल हुआ था और एक महाशक्ति के रूप में उभरा। इस पूरे मिशन को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। ये पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाद स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी और देश ने परमाणु परीक्षण करने का साहस दिखाया था। और आज ही की तारीख को ईयर 1991 में एक कंपनी में काम करने वाली केमिस्ट 27 वर्षीय हेलेन शर्मन ने ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री के तौर पर सोवियत सोयूज यान से उड़ान भरी थी। आपको बता दें, हेलेन शर्मन को एक पहेली का जवाब देने पर ये मौका दिया गया था। कहते हैं कि बड़े से बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री का स्वरूप चाहे आज जो भी हो, उसके पहले प्रयास की अगर हम बात ना करें, उसका जिक्र ना करें, तो ये कैसे हो सकता है। और इसी पहले प्रयास का नाम था श्री पुंडालिक। साल 1918 मई को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ में पहली भारतीय मूक फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडालिक रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था दादा साहेब तोरने ने। कार्यक्रम है आपका अपना गुड मॉर्निंग शिमला और इस प्रोग्राम में अभी बातें और भी हैं आपके साथ। आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

एफएम शिमला पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। दोस्तों, हर पुरानी चीज सिर्फ पुरानी नहीं होती। कुछ दीवारें कहानियां सुनाती हैं, कुछ तस्वीरें बीता हुआ दौर दिखाती हैं और कुछ चीज़ें हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। उन्हीं यादों और विरासतों का इतिहास सहेजे हुए हैं 18 मई का ये दिन, क्योंकि आज सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और इस दिन को मनाने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ईयर 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा यानी कि ICOM द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि दुनिया भर के लोगों को संग्रहालय यानी म्यूजियम्स के बारे में, इनके महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। ये संग्रहालय सिर्फ पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं होते, ये हमारी संस्कृति, कला, इतिहास और आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख का खजाना होते हैं। भारत में भी कई ऐसे संग्रहालय हैं जो हमारी विरासत को जीवित रखे हुए हैं, चाहे वो इंडियन म्यूजियम हो या नेशनल म्यूजियम हो। हर संग्रहालय अपने अंदर अनगिनत कहानियाँ समेटे बैठा है और शिमला की अगर हम बात करें तो

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम, इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे महंगी चीज क्या है? ना सोना, ना गाड़ियां और ना बड़े बड़े घर, ये ज्यादा कीमती चीजें नहीं है। सबसे कीमती चीज है हमारा ध्यान, यानी कि अटेंशन। आज की दुनिया में देखा जाए तो हर कोई आपका ध्यान चाहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन

सोशल मीडिया, छोटी छोटी वीडियोस और धीरे धीरे हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड में भटकने लगता है। यही वजह है कि अब लोगों के लिए 5 मिनट शांति से बैठना भी मुश्किल होता जा रहा है। और विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञ कहते हैं कि हर इंसान अगर दिन में कुछ समय बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना जल्दबाजी के बिताएं तो उसकी सोच बेहतर हो सकती है, तनाव कम हो सकता है और अपने काम में भी इंसान फोकस कर सकता है। तो भाई, हमारा भी यही मैसेज है आपके लिए भी और हमारे अपने लिए भी कि इस दिन को या हर एक दिन में जो है थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम ज़रूर दें। कभी खुली हवा में टहल लीजिए, कभी पहाड़ों को चुपचाप निहारिए और बस कुछ देर खुद के साथ, खुद के लिए आराम से बैठिए। क्योंकि

जरूर दे। कभी खुली हवा में टहल लीजिए, कभी पहाड़ों को चुपचाप निहारिए और बस कुछ देर खुद के साथ, खुद के लिए आराम से बैठिए। क्योंकि जिस इंसान के पास शांत मन होता है, वही जिंदगी के सबसे अच्छे फैसले ले पाता है।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। और आज की जो ये तारीख है 18 मई की, हमें एक सीख दे के जाती है, छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत सीख, कि पुरानी चीजें सिर्फ यादें नहीं होती, वो हमारी पहचान होती है। क्या आप जानते हैं कई म्यूजियम में आज भी सैकड़ों साल पुरानी किताबें और हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई है। हिमाचल की पारंपरिक कला और पुराने वाद्य यंत्रों को भी कई जगहों पर संरक्षित किया गया है और किया जा भी रहा है, ताकि नई पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को समझ सके। और एक और रोचक बात है कि किसी भी पुरानी वस्तु को एंटीक तब माना जाता है जब वो लगभग 100 साल या उससे ज़्यादा पुरानी हो। और बात करें आज के डिजिटल दौर की, तो आज के डिजिटल दौर में दुनिया के कई म्यूजियम अब वर्चुअल टूर भी उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी लोग घर बैठे इतिहास देख सकते हैं। तो अगर कभी समय मिले तो अपने शहर की किसी पुरानी इमारत, मंदिर, म्यूजियम या विरासत स्थल को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतिहास किताबों से ज़्यादा जगहों से महसूस होता है।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

बिल्कुल जी, अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि आज सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें आज का विषय है यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिला व उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना और हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योजना। इस विषय पर विशेषज्ञ रहेंगे श्री आर मेहुल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

0: हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर इस विषय पर सुदर्शन वशिष्ठ से सुनिए हिंदी वार्ता सुबह 9 बजे। और फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य और 9:30 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं एफएम शिमला पर एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए हैं। इन चुनावों के लिए 69% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से आर्थिक राष्ट्रवाद और विवेकपूर्ण उपभोग के आह्वान ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक नई चेतना जागृत की है। उन्होंने कहा कि सोने के सीमित उपयोग और ईंधन संरक्षण से देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और आत्मनिर्भर भारत को अभूतपूर्व गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। प्रदेश भाजपा ने कहा है कि राज्य में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह से मूकदर्शक बनी हुई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि राज्य में सीमेंट के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए 29 मई तक सुझाव भेज सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी जनरल विंग ग्रुप ए जॉब ट्रेनी के पदों के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा बीते 22 फरवरी को आयोजित की गई थी। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की व्यक्तिगत परीक्षा 1 जून से शुरू होगी। न्यूज हेडलाइंस में भी इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं फिल्म शिमला के साथ। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर

0: पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में

0: उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
1: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई

0: और किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स। 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ। नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में मंडी और पालमपुर में सबसे ज्यादा करीब 69% मतदान दर्ज किया गया है। इसी तरह धर्मशाला में करीब 60%, जबकि सोलन में 58% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले हैं। शिमला जिला के पर्यटन स्थल नारकंडा में 8 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध माँ हाटू वाली मंदिर में कल हाटू मेला शुरू हो गया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना करने के बाद मेले का शुभारंभ किया। कमेटी अध्यक्ष कंवर ने बताया कि हाटू मेला हर वर्ष ज्येष्ठ माह की संक्रांति को मनाया जाता है। शहर में भवन निर्माण के

0: नगर निगम ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इस दौरान अगर भवन निर्माण के दौरान संबंधित मालिक ने लापरवाही बरती तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर निर्माण के दौरान कोई व्यक्ति घायल होता है तो नगर निगम संबंधित मालिक के भवन का नक्शा तक कैंसिल कर सकता है। इसके साथ ही चालानी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश पंचायत व निकाय चुनाव के कारण निर्वाचन आयोग ने हथियार जमा करवाने के आदेश दिया था। आदेश के बाद शिमला जिला में अभी तक 14,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार जमा करवा दिए हैं। वहीं शिमला जिला में करीब 16,000 लाइसेंसधारक लोगों के पास हथियार हैं। इनमें से अभी भी कई लाइसेंसधारकों ने हथियार जमा नहीं करवाए हैं। शिमला पुलिस ने इन्हें जल्दी हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए थे। वहीं अब भी कोई हथियार जमा नहीं करवाता है तो इन व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में इस माह के आखिरी दिनों के दौरान भी गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल से 23 मई के बीच पहाड़ों पर फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और आइए सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए मदन झालटा और प्रदीप कुमार की आवाज में ये लोकगीत।

चंद्रमोहन ठाकुर की आवाज़ में अभी आपने ये सिरमौरी लोकगीत सुना, और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रमा सिंह की आवाज़ में ये अगला लोकगीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कानून की बात। विषय है यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिला व उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योजना। विशेषज्ञ है श्री आर मेहुल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी धर्मशाला के इस विशेष जानकारी पूर्ण कार्यक्रम कानून की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम है। कई बार जीवन में ऐसी प्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जब व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता है, विशेषकर

0: वे महिलाएं और नागरिक जो किसी अपराध का शिकार होते हैं। ऐसे समय में न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नालसा कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्ति योजना 2019 के बारे में। ऐसी योजनाएं जो पीड़ितों को न्याय की राह पर संबल और सहायता प्रदान करती हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री आर मिहुल शर्मा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कानून किस प्रकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ा है। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, तो हमारे श्रोताओं को पहले ये बताइए कि यह प्राधिकरण आम जनता के लिए किस तरह से कार्य करता है।
1: सभी

0: आर मेहुल शर्मा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कानून किस प्रकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ा है। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, तो हमारे श्रोताओं को पहले ये बताइए कि यह प्राधिकरण आम जनता के लिए किस तरह से कार्य करता है।
1: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन मुख्यतः समाज के गरीब, पिछड़े वर्गों व अपराध पीड़ितों के लिए किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के इन गरीब, पिछड़े वर्गों व पीड़ितों को मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो न्याय से वंचित रह जाए। इसके लिए हम गांव व दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि कानून की आधारभूत जानकारी सबको मिल सके व ये लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त कानूनी सहायता भी देता है। इसके लिए महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वह व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख से कम हो, ट्रांसजेंडर्स, एड्स पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग व औद्योगिक कामगार पात्र हैं। एप्लीकेशन के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दस्तावेज की आवश्यकता होती है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या विधिक सेवा प्रधि कमेटी में अप्लाई किया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपराध पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुआवजा देने की भी व्यवस्था की है, जो कि पीड़ित व्यक्ति को, अपराध से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, उसके प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत मिलता है।
0: क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इन दोनों स्कीम्स, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम और कंपनसेशन टू द वुमन विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, इनमें अंतर क्या है?
1: पीड़ित महिला प्रतिकर स्कीम में सिर्फ महिलाओं को यौन अपराधों के कारण जो उन्हें शारीरिक व मानसिक हानि हुई है, उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की एक स्कीम है। हमारी दूसरी प्रतिकर स्कीम, जो कि हिमाचल प्रदेश अपराध के पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 है, उसमें महिला व पुरुष दोनों मुआवजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीम है।
0: जी शर्मा जी, ये बताइए इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत किन व्यक्तियों को पीड़ित माना जाता है?
1: सबसे पहले तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन स्कीमों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति केवल अपराध पीड़ित होना चाहिए। मुआवजे के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनमें प्राथमिक सूचना यानी FIR दर्ज हुई हो। विशेष परिस्थितियों में यदि FIR ना हुई हो तो कोर्ट में शिकायत दर्ज होनी चाहिए। इन स्कीमों में Clause 2H के अंतर्गत वो व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो पीड़ित कहलाता है, परंतु यदि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी परिस्थिति में उसके परिवारजन, वारिस या आश्रित पीड़ित माने जाएंगे और ये लोग मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
0: जी, अब बात ये आती है कि अपराध होने के कितने समय के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है?
1: इन स्कीमों में अपराध दर्ज होने के 12 महीने के अंदर मुआवजा के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में 12 महीने के भीतर आवेदन ना किया जा सका तो प्रार्थी को वो खास वजह बतानी होगी जिसके कारण वो 12 महीने के भीतर आवेदन ना कर पाया। यदि DLS से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, या SLS से, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ये वजह एक जायज वजह लगती है तो कमेटी प्रार्थी की एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकती है, अन्यथा रद्द भी किया जा सकता है।
0: जी शर्मा जी, ये बताइए इन स्कीम्स के अंतर्गत पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन कैसे कर सकता है?
1: पीड़ित को मुआवजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट में Section 396(2), जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, जो पहले हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, जो उसमें संशोधन करके और अब जो नया कानून हमारा प्रोसीजर के लिए आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 396 सब धारा 2 के अंतर्गत रिकमेंडेशन कर सकता है ट्रायल कोर्ट, या फिर पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मुआवजा लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जब प्राथमिकी दर्ज होती है तो हर केस में जहां मुआवजा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वहां पुलिस द्वारा मुआवजा प्राप्त करने में सहायता दी जा सकती है। और तीसरा तरीका यह है कि फैसले के समय यदि कोर्ट को लगे कि पीड़ित को मुआवजा जो दिया जा चुका है उसमें पुनर्वास के लिए काफी नहीं है, उसको रिहैबिलिटेशन के लिए अगर ट्रायल कोर्ट को, जो समय कोर्ट उस केस को ट्राई कर रहा है, अगर उनको यह लगता है कि जो अभी तक मुआवजा दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है, तो कोर्ट DLSA से मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश भी कर सकता है।
0: जी, मुआवजा आवेदन के कितने समय के भीतर मिल जाना चाहिए?
1: मुआवजा आवेदन के 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है।
0: और ये मुआवजा तय कौन करता है?
1: जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास कंपनसेशन यानी मुआवजा की कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें देखा जाता है कि क्या प्रार्थी

0: इसका पात्र है। यदि व्यक्ति विक्टिम यानी पीड़ित है तो उसकी एप्लीकेशन को जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति से यह तय होता है कि पीड़ित को कितना मुआवजा मिलना चाहिए।
1: इन स्कीम्स में मुआवजे का भुगतान कौन करता है?
0: जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तय किए गए मुआवजे में फंड्स की डिमांड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से की जाती है। राज्य सरकार इन स्कीमों के अंतर्गत प्रतिकर भुगतान के लिए फंड्स राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देती है। ये अकाउंट मेंबर सेक्रेटरी सालसा द्वारा ऑपरेट होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डिमांड किया गया फंड लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी सालसा द्वारा रिलीज किया जाता है।
1: मुआवजा तय करते समय किन किन मापदंडों का ध्यान रखा जाता है?
0: मुआवजा तय करते समय दोनों स्कीमों में दिए गए स्केड्यूल को ध्यान में रखा जाता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के स्केड्यूल में सिर्फ मिनिमम अमाउंट दिया गया है, जैसे कि हत्या के लिए कम से कम 2 लाख रुपए और बलात्कार के केस में पीड़ित के लिए 3 लाख रुपए। इस शेड्यूल में ऊपरी सीमा नहीं दी गई है, जबकि कंपनसेशन टू वुमेन्स विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिए गए हैं, जैसे हत्या या मृत्यु में 5 लाख से 10 लाख रुपए और बलात्कार के केस में पीड़ित को 4 से 7 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। इसी तरह अन्य अपराधों के पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी मुआवजा तय करते समय कुछ और मापदंडों को भी ध्यान में रखती है, जैसे अपराध की तीव्रता, मेडिकल एक्सपेंसेस, शिक्षा का नुकसान, क्या पीड़ित का रोजगार अपराध के कारण छूट गया है, क्या पीड़िता अपराध के कारण गर्भवती हो गई है, क्या उसे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD तो नहीं हो गई, क्या पीड़ित अपराध के समय HIV पॉजिटिव तो नहीं हो गया, अपराध के कारण कोई शारीरिक अक्षमता तो नहीं हो गई, क्या पीड़ित को पुनर्वास की जरूरत है, क्या कोई अन्य कारण जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ठीक लगे। इन सब बातों को मद्देनजर में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी मुआवजा तय करती है और मिनिमम अमाउंट जो स्केड्यूल में दिया गया है उसमें कुछ और अमाउंट बढ़ाया जा सकता है।
1: क्या मुआवजा वापस भी लिया जा सकता है?
0: जी हाँ, मुआवजा वापस भी लिया जा सकता है यदि मुआवजा लेने के बाद पीड़ित या पीड़िता प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट ना करे, जानबूझकर झूठी इन्फॉर्मेशन देता या देती है या फिर झूठी गवाही देती है। इन परिस्थितियों में मुआवजा वापस लिया जाने का भी प्रावधान है।
1: यदि DLSA द्वारा कंपनसेशन देने से मना कर दिया जाता है तो क्या DLSA के फैसले के खिलाफ अपील भी की जा सकती है?
0: हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्कीम पीड़ितों को विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन के लिए बनाई गई है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही इसका प्रावधान है। यदि पीड़ित को DLSA का फैसला मान्य नहीं है, वह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 90 दिन के अंतर अपील कर सकती है, कोई भी पीड़ित या पीड़िता।
1: जी, यदि किसी अन्य अथॉरिटी या किसी अन्य योजना के अंतर्गत पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है तो क्या फिर भी पीड़ित को इन स्कीम्स में मुआवजा मिल सकता है?
0: यदि पीड़ित व्यक्ति को किसी और विभाग द्वारा किसी अन्य स्कीम के तहत मुआवजा दिया गया है तो उसे इन स्कीमों के अंतर्गत मुआवजा नहीं मिलेगा, यदि मिला हुआ मुआवजा इन स्कीमों के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे से अधिक हो। परंतु यदि कम हो तो बकाया राशि मुआवजा के रूप में दी जा सकती है।
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में मैं श्रोताओं को यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने आसपास देखें, यदि आपको इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी मिलता है तो उसे हमारे धर्मशाला स्थित कार्यालय में फोन नंबर 01892222370, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा 01892222370 फोन नंबर पर संपर्क करने की या फिर हमारे नालसा ऐप से ऑनलाइन अप्लाई करने की सलाह दे सकते हैं, ताकि किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद हो सके।
1: श्रोताओ, आज के कार्यक्रम कानून की बात में हमने जाना कि किस प्रकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना अपराध से प्रभावित व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को आर्थिक सहायता और न्याय पाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास यही है कि कानून की ये बातें आप तक सरल भाषा में पहुंचे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप स्वयं और दूसरों की मदद कर सकें। हम श्री R. मिहुल शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी सहजता से इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। विषय था यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिला व उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकार।

0: यानी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योजना। विशेषज्ञ थे श्री आर मेहुल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जी हाँ, जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
4: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।
0: ट्यून इन है आप एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: और एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर विषय पर हिंदी वार्ता। वार्ताकार है सुदर्शन वशिष्ठ।
1: हिमाचल प्रदेश की एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर है जो इस भूखंड को देश के अन्य भागों से एक अलग और विशिष्ट पहचान देती है। इस संस्कृति में पहले हम पौराणिक हिमाचल की बात करेंगे जो अनेक पौराणिक समुदायों का स्मरण कराता है। वैदिक और पौराणिक साहित्य में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, कोल, किरात, नाग, खश वर्गों का वर्णन मिलता है। यद्यपि इन्हें सीधे सीधे देवता नहीं माना गया, तथापि इनका निवास स्थान पृथ्वी पर न होकर पर्वतों पर माना गया है। पर्वत देवताओं के अधीन थे और इन्हें स्वर्ग कहा जाता था। पर्वतवासियों में दैत्य, दानव भी शामिल थे। इनका स्थान मनुष्य से ऊपर और देवों के समीप रहा है। विष्णु पुराण में भूगोल वर्णन में गंधमादन पर्वत तथा कैलाश के साथ मेरु पर्वत के चारों ओर शीतांत आदि केसर पर्वतों के बीच सिद्ध चारणों से सेवित कंदराओं का वर्णन मिलता है। यहीं गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानवों को अहर्निश क्रीड़ा करते बताया गया है। यह भी कहा गया है कि ये सभी स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते थे, जहां देवता और धार्मिक पुरुष वास करते थे। इंद्र का स्वर्ग, कुबेर की अलकापुरी, शिव की कैलाशपुरी सभी हिमालय या पर्वतों पर स्थित थी। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में भी कैलाश का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्ध हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि यहाँ सदैव बने रहते हैं। कैलाश जाते हुए कुबेर की अलकापुरी का वर्णन आता है, जहाँ सुगंधित वनों में यक्षपतियाँ निवास करती हैं। समय के अनंतर जब पृथ्वी पर आर्य जाति का प्रभुत्व बना, उस

में स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की एक महत्वाकांक्षा सभी राजाओं में मनी रहती थी। जो स्वर्ग पर विजय प्राप्त करता वह इंद्र कहलाता था। अनेक प्रतापी राजाओं का स्वर्ग पर विजय और इंद्र पद पाने का उल्लेख मिलता है। इससे आर्यों और देवों तथा देवस्थानों में रहने वाले वर्गों में संघर्ष बना रहा। आज के कुल्लू या पुरातन कुल्लू के वासियों को स्थानीय भाषा में कोल्टा कहा जाता है। इस मिलते जुलते शब्दों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि कुल्लू वासी मूलतः कोल थे। आर्यों का पहला संघर्ष कोल संघ से हुआ। ऋग्वेद की 4:30-14 ऋचा में इसका उल्लेख मिलता है कि किस तरह शंबर नामक राजा का संघर्ष आर्यों से हुआ। इस ऋचा के अनुसार कुछ विद्वानों ने शंबर को कोल संघ का अधिपति माना है तो कुछ ने कोल से इतर अर्थात किसी दूसरे संघ का। दोनों ही स्थितियों में कोल संघ की मौजूदगी सिद्ध होती है। अर्जुन का किरात रूप वेशधारी शिव से संघर्ष, प्रेणी में शबरी का मंदिर आदि मिथ भी यहाँ के वासियों को किरात सिद्ध करते हैं। वास्तव में कोल हिमालय के उत्तर पूर्वी दर्रों से भारत आए। द्रविड़ों ने इन्हें भगा दिया। कोल जब पर्वतों के बीहड़ों में रहने लगे तो किरातों ने हिमालय में प्रवेश किया और इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया। कोल शिल्पकार थे, नृत्य गायन धातु शिल्प में प्रवीण थे और बांस की वस्तुएं बनाते थे। इनका एक वर्ग मुंडा के रूप में बिहार के संथालों में भी देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कोल आज भी एक वर्ग के रूप में कांगड़ा में विद्यमान है। कुल्लूवासी किरात थे। इतिहासकारों का मत है कि जब कोल बीहड़ों में रह रहे थे, मंगोल आकृति के किरातों ने चीन के आसपास से भारत में प्रवेश किया और कोलों को यहाँ से भगा दिया। ये लोग असम से नेपाल कुमायूं कांगड़ा होते हुए लाहौल स्पीति तक गए। किरात चपटी नाक वाले, छोटी आँखों वाले, दाढ़ी मूछ विहीन, रोम रहित और नाटे कद के थे। ये लोग हिमालय के क्षेत्र को खश मंडल कहे जाने से पूर्व किरात मंडल कहते थे। त्रिपुरा का प्राचीन नाम भी किरात ही था। भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली जाति किरात ही मानी जाती है। खश लोग उसके बाद में आए। किरातों के दो वर्ग माने जाते हैं, भील किरात और राज्य किरात। बाराही संहिता में किरातों की भूमि चीन प्रदेश का मध्य भाग माना है। बाण भट्ट ने किरातों का आवास कैलाश के समीप हेमकूट पर्वत माना है। कुल्लू में हामटा को हेमकूट पर्वत माना जाता है। किरात मंडल की स्थापना से कुलिंदों की शक्ति क्षीण होगी। केदारखंड को किरात मंडल कहा जाने लगा। राहुल जी ने भागीरथी के उद्गम पर किरातों का आधिपत्य होने से इसे किराती कहा है। इतिहासकारों ने किरातों का संक्षिप्त नाम किर या कीर भी दिया है। ब्रह्मपुर या ब्रह्मवर में राजा लक्ष्मण वर्मन के समय ब्रह्मपुर पर कीरों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने उत्तर की ओर से आकर हमला किया। जिला कांगड़ा के बैजनाथ को 12वीं शताब्दी तक कीरग्राम कहा जाता रहा। कुल्लू के मलाणा की भाषा को आज भी कणाशी या किराती कहा जाता है। किन्नर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग रहा है हिमाचल प्रदेश के समाज का। किन्नरों का उल्लेख यक्ष, गंधर्व, सिद्ध तथा विद्याधरों के साथ हुआ है। वायु पुराण में किन्नरों को महानील पर्वत का वासी बताया गया है। मत्स्य पुराण में यक्ष, पिशाच, राक्षस, विद्याधर, किन्नर, गंधर्वों को हिमवान पर्वत का वासी माना गया। महाभारत में किन्नरों का वास किम पुरुष वर्ष माना गया है। किन्नौर में आज भी खानदान को किम कहा जाता है, अतः किम पुरुष वर्ष सार्थक होता है। यह प्रदेश धवल गिरी को लांग कर आता था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं का वास मानसरोवर भी माना गया है। कुछ पुराणों में किन्नरों को निशाचरों और कुछ पुराणों में देवों की श्रेणी में रखा गया है। उक्त संदर्भों से निश्चित हो जाता है कि किन्नर हिमालय वासी थे। किन्नरों को अश्वमुख तथा किन्नरियों को मधुर कंठी कहा गया है। ये लोग नृत्य तथा गायन में प्रवीण थे। राहुल जी ने कहा है, किन्नर के लिए किम पुरुष शब्द भी संस्कृत में प्रयोग हुआ है, अतः इसी का नाम किम पुरुष वर्ष भी था। किन्नर या किम पुरुष देवताओं की एक योनि मानी जाती थी, किंतु इससे इतिहास को जानने में सहायता नहीं मिलती। किन्नर कभी चंद्रभागा के तट पर वास करते थे। सतु पिटक में लिखा है, चंद्रभागा नदी तीरे अहोसी किन्नरों सदा। तब किन्नरों का क्षेत्र कुज्जम से इधर सीमित हो गया था। राहुल जी ने किन्नौर में मृतकों की समाधियां भी देखी, जिनमें हड्डियों के साथ बर्तन भी निकले।
उन्होंने एक खेत की खुदाई करवाई।

जिस पे लंबी कब्र में दीर्घ कपाल व्यक्ति की खोपड़ी मिली। लिपा में एक कब्र के सिर पर दाहिनी ओर एक कटोरा तथा मिट्टी का मध्य कुतुब भी देखा गया। अतः किसी समय यहाँ मृतकों को दबाया भी जाता रहा होगा। किन्नरों के समय के साथ साथ अन्य जातियों का समावेश भी होता गया। ऊपर से तिब्बती और नीचे से हिंदू के समावेश से एक अलग ही संस्कृति का जन्म हुआ। जैसे आजकल किन्नौर में कृष्ण भी है, कासूराज भी है, देवी चंडिका भी है और 10 रावण भी है। नाग जाति भी एक पुरातन जाति रही है जो अब जनजातीय क्षेत्रों में या दूसरे क्षेत्रों में वर्तमान नहीं है, लेकिन पुराने समय में नाग जल स्रोतों के स्वामी थे। ये पशुधन के स्वामी भी माने गए। जल स्रोतों पर आधिपत्य होने के कारण इनका पुरातन संघों और आर्यों से संघर्ष होता रहा। ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त में ऋषि नागवंश के थे। राजा नहुष जिन्होंने इंद्रपद छीना भी नागवंशीय थे। नाग उत्पत्ति की पौराणिक कथा की भांति यहाँ कई कथाएं सुनाई जाती हैं। कुल्लू में भोटंती देवी और वासुकी नाग से अन्य नाग उत्पन्न हुए। एक कन्या द्वारा 18 नाग एक घड़े में पैदा होने की कथा भी सुनाई जाती है। इसी प्रकार किन्नौर में भी नाग उत्पत्ति की कई कथाएं प्रचलित है। किन्नौर के उरनी में नाग देवता का एक गीत गाया जाता है। बैसैरू नाग के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। किन्नौर में नाग को नागस कहा जाता है। नाग और आर्यों का संघर्ष हमेशा होता रहा। ऋग्वेद के इंद्र वृत्त युद्ध में वृत्त को अहि कहा गया है। अहि से प्रतीत होता है कि वृत्र नागों का अधिपति था जिसका आधिपत्य सप्त सिंधु में था। आर्यों ने उसे असुर कहकर पुकारा। उसका जल स्रोतों पर अधिकार था, अतः इंद्र को उससे युद्ध करना पड़ा। वृत्र को अहि भी कहा गया तो शंबर को भी अहि ही कहा गया। अहि के अर्थ में शंबर एक नाग शासक भी हो सकता है। शंबर के साथ आर्यों का 40 वर्ष तक युद्ध जारी रहा जिस पर भी उसे परास्त नहीं कर पाए। सप्त सिंधु के जल स्रोत विपाशा परुषणी के मध्य स्थित थे जो आज के चंबा मंडी कुल्लू और कांगड़ा हैं। आर्य नाग संघर्ष महाभारत में जन्मेजय के नाग यज्ञ तक जारी रहा। जन्मेजय ने नागों को समूल नष्ट करने की शपथ ली थी और नागों को पकड़कर जिंदा जला दिया गया। हालांकि पौराणिक भारत में देव नाग संधियां होती रही हैं। शिव ने नाग को अपने गले का आभूषण बनाया तो विष्णु ने शेष सैया स्वीकार करी। शेष नाग ने एक ओर पृथ्वी को धारण किया तो दूसरी ओर शिशु कृष्ण को भी बचाया। पौराणिक साहित्य में नाग के वंशों का उल्लेख मिलता है। कौशिक सूत्र में 6 नाग हैं, वासुकी, चित्रसेन, चित्ररथ, तक्ष और उपतक्ष। वाराह पुराण में 9 नाग हैं, अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, कम्बज और अपराजित। नाग उत्पत्ति कथा में कद्रु और विनता की एक कथा प्रसिद्ध है। नागों की गरुड़ से भी शत्रुता रही है। एक कथा के अनुसार अवलोकितेश्वर द्वारा समझौता करवाने पर नाग आर्य संधि हुई। हिमाचल में नागों के स्वतंत्र मंदिर के अलावा कुल्लू, चंबा, पांगी, मंडी सब स्थानों में मंदिरों के बाहर नाग आकृतियां बनी हुई दिखती हैं। नागों में की एक जाति कांगड़ा में अभी भी विद्यमान है। एक अन्य वर्ग खश पर्वतों के एक लंबे चौड़े भूभाग के स्वामी रहे। बाद में धीरे धीरे इनका प्रभाव एक क्षेत्र तक ही सीमित हो गया। विष्णु पुराण के अनुसार कश्यप की पत्नी खशा से यक्ष तथा राक्षस उत्पन्न हुए। उनकी संतान खश कहलाई। खश का दूसरा नाम दर्द भी माना गया है। जिनकी भाषा दर्द पेशाची थी जो कश्मीर तक फैली हुई थी। पलिनी ने कहा है सिंधु और यमुना के बीच जंगल में वास करने वाली जातियां खश और क्षत्रिय हैं। खश कुमाऊं से पश्चिम की ओर रहते थे। तौंस और शारदा नदियों के बीच गढ़वाल, कुमाऊं में तंगण और किरात बसते थे। फ्रांसिस हैमिल्टन ने माना है कि खश नेपाल और कश्मीर के बीच रहते थे। इनका राजपूतों से मुकाबला किया है और इन्हें आर्य भी माना जाता है। खसों का संघर्ष यहाँ निरंतर किरातों और नागों से होता रहा। नागों को तो भगा दिया गया। किन्नर किरातों से संघर्ष के बाद एक अलग भूभाग में बस गए। खसों का क्षेत्र आज का महासू है जो सिरमौर तक जाता है। खसों से ही कनैत, राहु और चौहान बने। कुछ इतिहासकारों ने माना है कि खश आर्यों का ही एक वर्ग था। आर्यों की एक टोली मध्य एशिया से ईरान होती हुई यूरोप तक गई। दूसरी टोली दो दलों में विभाजित होकर हिंदू कुश पर्वतों को पार कर सिंधु घाटों की ओर गई और तीसरी मध्य एशिया से काशकर, हिंदू कुश, गिलगित, कश्मीर की ओर मुड़ी। बहुत बाद में जब आर्यों का प्रभाव बढ़ गया तो खशों से

0: उनका तालमेल हो गया। राहुल जी ने किन्नौर में खशों के साथ खून गिनाए हैं। हर क्षेत्र में एक बहादुर खून हुआ करता था। शिमला हिल्स गजेटियर में उल्लेख है, आजकल लोगों में प्रचलित परंपरा के अनुसार इन पहाड़ों के मूल निवासी खश थे, जिनमें जाति या वर्ग भेद नहीं था। वे आर्य शाखा के थे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये माना गया है कि उसी जाति के थे जिसके कुमाऊं और गढ़वाल के खशिया लोग हैं और जो आमतौर पर आर्य समझे जाते हैं। खशों के अगले वर्गीकरण में ये लोग बुशहर और शिमला हिल्स की रियासतों में भी बसे। जाति भेद ना होना हिमाचल प्रदेश के समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। किन्नर, किरात तथा खशों में जाति या वर्ग भेद नहीं था। इसी कारण कुल्लू, महासू, सिरमौर में देवताओं के पुजारी ब्राह्मण न होकर राजपूत ही है। राजपूत पुजारी ही ब्राह्मणों की भांति नित्य नियम से संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में यक्ष जख नाम से भी विद्यमान रहे कई स्थानों के नाम आज भी जख कहलाते हैं। शिमला में जाखू, डोडरा कवार में जाख नामक संस्थान है। डोडरा कवार के जाख देवता का प्रभाव तौंस के पार है। जख को पशुधन का स्वामी माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक विशेष पूजा पद्धति रही है जिससे यहाँ की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का हमें पता लगता है। प्रकृति पूजा मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही रही। सभ्यताओं के प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति से डरता रहा, अतः भय के कारण या दूसरे कारणों से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और पत्थर पहाड़ों को पूजना आरंभ किया। सूर्य, चंद्रमा जैसे प्रत्यक्ष देवों को देखकर नतमस्तक हुआ, गुफाओं में वास कर इनके चित्र बनाए, क्योंकि सबसे पहले भेड़ बकरी पालन से जीवन यापन हिमाचल प्रदेश में किया जाता रहा है। अतः खेती करना सीखने से पहले भूमि, वृक्ष, जल और पत्थर पहाड़ों आदि का पूजन आरंभ हो गया होगा। इस विशिष्ट संस्कृति के कारण हिमाचल प्रदेश के इस भूभाग में अद्भुत देव संस्कृति का उदय हुआ। ये देव संस्कृति देश के अन्य भागों से भिन्न है। प्रदेश के ऊपरी भागों में देवता ही ग्रामीणों के लिए सब कुछ है, वही पालक है, वही संहारक है, वही प्रजा का पालन करता है, वही न्याय देता है। हर गांव में एक देवता है जो उस गांव का शासक है। देवता के शासन में ही ग्राम लोकतंत्र टिका हुआ है। कुल्लू के मैलाना में देवता जमलू का गणतंत्र है। अनेक सालों से यहां से कोई मुकदमा पुलिस या अदालत में नहीं गया, देवता ही सभी लड़ाई झगड़ों का न्याय करता है। ऐसी व्यवस्था कुल्लू में लगभग हर गांव में चली हुई है। इसके अलावा सिरमौर और महासू में भी देव परंपरा का यही स्वरूप हमें देखने को मिलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी वार्ता, और इस में आज आपने सुना हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर विषय पर सुदर्शन विशिष्ट से वार्ता। FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। FM शिमला के साथ आप जुड़े हुए हैं, और आइए अब आपको बता दें कि आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से आप कौन से मुख्य मुख्य कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे वसुंधरा कोमकली और कल्पनी कोमकली से राग रामकली पर गायन।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा सुबह 11:30 पर 1:10 से 2 बजे के मध्य आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे, इसके अलावा साय 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शिमला मिर्च की उन्नत खेती, इस विषय पर बातचीत। कुछ पुराने और कुछ नए फिल्मी नगमे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत में दोपहर 12:10 पर, 2:45 पर और शाम 8:15 पर। शाम 8 बजे धारा रे गीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ओम प्रकाश व साथी कल्पना तोमर और रूपलाल के गाए लोकगीत। शाम 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात 9:15 पर गुलदस्ता कार्यक्रम में सुनिए दिलकश गजलें। रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। दस बजे का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का और 10:30 पर आप सुनेंगे सुरबहार कार्यक्रम।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे चंबियाली कार्यक्रम 4:20 पर। 4:50 का समय रहेगा मंडियाली कार्यक्रम का। पंगवाली कार्यक्रम सुनेगा 5:20 पर। महास्वी कार्यक्रम 6:06 पर और 6:35 पर आप सुनेंगे कुल्लूवी कार्यक्रम। दोपहर 2:30 पर लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम हिमगुंजन आप सुन सकते हैं। आज दोपहर 3:05 पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। तो ये है वो मुख्य कार्यक्रम जो आज आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से। और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। और अभी आप कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा।

0: चुनाव 2026 वोट जरूर करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 47 शहरी निकायों के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। 4 नगर निगम चुनाव के परिणाम 21 मई को होंगे घोषित। शहरी निकायों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों की जीत। प्रदेश में आए शहरी निकायों के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीत करेगी दर्ज। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर व पारंपरिक कला को सहेजने के लिए केलंग निवासी तंजीन बौद्ध अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित। और धर्मशाला में हुए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शहरी निकायों में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए थे। देर शाम तक आए नतीजों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अधिकतर जगहों पर बाजी मारी। कुल्लू जिला के मनाली नगर परिषद में सभी 7 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की, जबकि कुल्लू नगर परिषद 11 सीटों में 3-3 पर भाजपा व कांग्रेस, जबकि 5 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। भुंतर नगर परिषद के 7 वार्डों में 3 पर भाजपा समर्थित, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और बंजार में

0: पांच पर कांग्रेस समर्थित जबकि दो वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में दो नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर के अलावा पांच नगर परिषद व एक नगर पंचायत के लिए वोट डाले गए। हमारे संवाददाता के अनुसार अधिकतर जगहों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस बीच जिला कांगड़ा में नगर परिषद व नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनहितैषी नीतियों की जीत बताया है। इधर दूसरी ओर ऊना जिले के नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने छह में से चार निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं चंबा नगर परिषद में आए परिणामों के अनुसार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कुल छह सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि यहां पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार पांच सीटों पर सफलता हासिल कर सके। सिरमौर जिले के नाहन नगर परिषद ने एक बार फिर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। नगर परिषद के 13 वार्डों में से 7 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। जीत के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में विजय जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत सीधे तौर पर दर्शाती है कि प्रदेश में चल रही कांग्रेस समर्थित सरकार से लोग तंग आ चुके हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की विजय ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जिसने 3.5 साल में हिमाचल के जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। और हम एक बार फिर इस बात को वायदे से कहते हैं, आने वाले साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। नाहन, सिरमौर और हिमाचल में विकास का एक नया दौर शुरू होगा।
0: शिमला जिला के रामपुर में 9 वार्डों वाली नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज कर परिषद में अपना परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहा। बिलासपुर नगर परिषद के 11 वार्डों में भाजपा ने 9 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। घुमारवी नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने ही सेंध मारी। यहां पर कुल 9 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 7 जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। इसी तरह शाहतलाई में भाजपा समर्थित उम्मीदवार 5 जबकि 2 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। श्री नैना देवी जी नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी। मंडी जिले के सरकाघाट नगर परिषद के 3-3 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस जबकि 1 अन्य वार्ड पर आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सुंदरनगर नगर परिषद के 13 वार्डों में से 9 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित और 2 पर आजाद उम्मीदवार विजेता रहे। नेरचौक नगर परिषद में कांग्रेस ने 8 वार्डों पर जीत हासिल की है, जबकि यहां पर भाजपा समर्थित 1 उम्मीदवार विजयी रहा। इसी तरह जोगिंदरनगर परिषद में 3 वार्डों में भाजपा समर्थित जबकि 2 पर आजाद उम्मीदवार जबकि 1 सीट पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहा। सोलन जिला के परवाणु नालागढ़ नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने परचम लहराए। जिले की अर्की व कंडाघाट नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी है। इस बीच नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को सहेजने के लिए निरंतर कार्य कर रहे केलंग निवासी युवा सामाजिक उद्यमी तंजिन बौद्ध को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तंजिन बौद्ध और उनकी टीम लंबे समय से लाहौल की विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों में जुटी हुई है। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से एक 80 साल पुराने पारंपरिक घर को संरक्षित कर धरोहर केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र का कोलर गांव आदर्श और सौर गांव के लिए चयनित किया गया है। योजना के तहत सिरमौर जिला के 27 गांव का चयन किया गया था, जिसमें सोलर पैनल लगाने की विभाग की योजना थी। एक रिपोर्ट।
2: सिरमौर जिला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अनुदान पर लोगों को

0: सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत कोलर के गांव कोलर को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर गांव चयनित किया गया है। योजना के मुताबिक 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव को सोलर प्लांट लगाने की सूची में शामिल किया जाना था, मगर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सिरमौर में 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 27 गांव चयनित किए गए थे, जिसमें कोलर गांव ने सबसे अधिक पैनल लगाकर पहला स्थान हासिल। योजना के तहत अब सोलर पावर प्लांट संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि कोलर गांव को मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: धर्मशाला में कल खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 8 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने शहरी निकायों के चुनाव के नतीजों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, हिमाचल के 47 शहरी निकायों में से 21 पर भाजपा, 19 पर कांग्रेस समर्थित काबिज, 7 में अन्य के हाथ चाबी। पंजाब केसरी ने लिखा है, हिमाचल में 51 शहरी निकाय चुनाव में 69.16% रहा मतदान। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, कल से 23 तक अंधड़, वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी। सीबीएसई में अब पुनर्मूल्यांकन सस्ता, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, बोर्ड ने 12वीं की आंसर शीट देखने की फीस में भी की कटौती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 47 शहरी निकायों के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। 4 नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। शहरी निकायों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों की जीत। प्रदेश में आए शहरी निकायों के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीत करेगी दर्ज। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर व पारंपरिक कला को सहेजने के लिए केलंग निवासी तंजिन बौद्ध अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित। और धर्मशाला में हुए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
4: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको।

ये सॉन्ग कभी आपने एंजॉय किया सपने फिल्म से? और इस गीत को सुनकर ऐसा लगा मानो जैसे किसी पहाड़ी वादी में हवा खुद कोई धुन गुनगुना रही हो। और कुदरत की सबसे खूबसूरत बात भी शायद यही है कि वो कभी एक जैसी नहीं रहती। हर मौसम, हर सुबह, हर शाम अपने साथ नया रंग लेकर आती है। कभी आपने ध्यान दिया हो तो पहाड़ों में मौसम बदलने से पहले जो है हवा का मिजाज बदल जाता है। पेड़ों की शाखाएं अलग तरह से झूमने लगती हैं और आसमान भी जैसे कोई नया चित्र बनाने लगता है। और ख़ास करके यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जब हम यहाँ रहते हैं तो हम लोग और यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि यहाँ कुदरत पहले संकेत देती है फिर मौसम बदलता है। और शायद यही वजह भी है कि यहाँ का हर रास्ता, हर जंगल, हर घाटी अपने भीतर कोई ना कोई कहानी छुपाए बैठी है।

खास करके अगर हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में बहार का अपना ही रंग होता है। यहाँ जैसे ही मौसम बदलता है पहाड़ों की वादियाँ नए रंगों से भर जाती है। सेब के बागों में खिलते फूल, सड़कों के किनारे झूमते पेड़ और दूर तक फैली हरियाली सब मिलकर ऐसा नज़ारा बनाते हैं कि मन बस यहीं ठहर जाना चाहता है।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम कुदरत के रंग में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब समय है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रदेश के शहरी निकायों में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए गए। देर शाम तक आए नतीजों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अधिकतर जगहों पर बाजी मारी है। कुल्लू ज़िला के मनाली नगर परिषद में अभी 7 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है, जबकि कुल्लू नगर परिषद की 7 सीटों पर 3-3 पर भाजपा व कांग्रेस, जबकि 5 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे। भुंतर नगर परिषद में 7 वार्डों में 3 पर भाजपा समर्थित, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस, और बंजार में 5 पर कांग्रेस समर्थित, जबकि 2 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। दूसरी ओर ऊना जिला में नगर निकाय के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 6 में से 4 निकायों में अपना कब्जा कर लिया है। वहीं चंबा नगर परिषद में आए परिणामों के अनुसार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि यहाँ पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार 5 सीटों पर सफलता हासिल कर सके। सिरमौर ज़िले के नाहन नगर परिषद में एक बार फिर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। नगर परिषद के 13 वार्डों में 7 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है। शिमला ज़िला के रामपुर में 9 वार्डों वाली नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज कर परिषद में अपना परचम लहराया। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहा। बिलासपुर नगर परिषद में 11 वार्डों में भाजपा ने 9 सीटों पर जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। मंडी ज़िला के सरकाघाट नगर परिषद में 3-3 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस, जबकि 1 अन्य वार्ड पर आज़ाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सुंदर नगर परिषद के 13 वार्डों में 9 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार, जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित और 2 पर आज़ाद उम्मीदवार विजयी रहे। धर्मशाला में कल खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने टीम के आठ विकेट पर 198 रन ही बना सकी। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को सहेजने के लिए निरंतर कार्य कर रहे केलंग निवासी युवा सामाजिक उद्यमी तेंजन बोध को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिमला शहर में भवन निर्माण के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत अगर भवन निर्माण के दौरान संबंधित मालिक ने लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर निर्माण के दौरान कोई व्यक्ति घायल होता है तो नगर निगम संबंधित व्यक्ति के भवन का नक्शा भी कैंसिल कर सकता है। गेटी थिएटर में आगामी 21 और 22 मई को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सहयोग से इवेंट राजधानी में करवाया जा रहा है। इसमें प्रदेश के बड़े साहित्यकार तो आएंगे ही, साथ ही दूसरे राज्यों के प्रसिद्ध कहानीकार और अन्य साहित्यिक विधाओं में पारंगत कलाकार भी हिस्सा लेंगे। न्यूज़ हेडलाइंस में भी इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। सुबह हो या शाम आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: FM Shimla. हंसने हंसाने आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहे ये जमाना कहे हमको दिव...

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और एफएम शिमला पर अब संगीतमय कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो 10 बजे से 11 बजे तक साथ रहेगा हिंदी फिल्मों के मधुर सदाबहार और दिलकश गीतों का खूबसूरत कारवां। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आपने मिशन कश्मीर फिल्म का गीत सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत, ढाई अक्षर प्रेम के। इस फिल्म का ये गीत अब आप सुनने वाले हैं अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ें हैं। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: आइए सुनते हैं अगला गाना। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। साथ ही FM शिमला 103.7 MHz और DTH सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के शहरी निकायों में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर शाम तक आए नतीजों में अधिकतर जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कल 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। चुनाव नतीजों में कुल्लू जिला के मनाली नगर परिषद में सभी 7 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कुल्लू नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बराबरी पर रहे, जबकि 5 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। भुंतर, बंजार और निरमंड के अधिकतर वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कांगड़ा जिले की 5 नगर परिषद व 1 नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जिले में आए चुनाव नतीजों के बाद राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनहितैषी नीतियों की जीत बताया है।
3: जिला कांगड़ा में 6 के 6 स्थानों में चुनाव हुए थे, वहां पे कांग्रेस ने जो है भारी बहुमत से जीती है। और ये कांग्रेस सरकार की नीतियां और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो काम जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और जिला कांगड़ा के लिए विशेष कर किए थे, ये उसका नतीजा है कि यहां पे जो है कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है।
2: दूसरी ओर ऊना जिले में नगर निकाय के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 6 में से 4 निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। चंबा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 6 जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 वार्डों में जीत दर्ज की। सिरमौर जिले के नाहन नगर परिषद में एक बार फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। यहां 13 वार्डों में से 7 पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। जीत की बधाई देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सीधे तौर पर दर्शाती है कि प्रदेश में चल रही कांग्रेस समर्थित सरकार से लोग तंग आ चुके हैं।
4: भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की विजय ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जिसने 3.5 साल में हिमाचल के जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। और हम एक बार फिर इस बात को वायदे से कहते हैं, आने

0: वाले साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। नाहन, सिरमौर और हिमाचल में विकास का एक नया दौर शुरू होगा।
1: शिमला जिला के रामपुर में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 9 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर परिषद में पहली बार अपना परचम लहराया है। बिलासपुर नगर परिषद के अलावा घुमारवी, शाहतलाई व नैना देवी के अधिकतर वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मंडी जिले के सरकाघाट नगर परिषद में भाजपा व कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 3-3 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं सुंदरनगर के 13 वार्डों में भाजपा समर्थित 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जिले के नेरचौक नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 8 वार्डों में जीत का परचम लहराया है, जबकि जोगिंद्रनगर नगर परिषद में भाजपा अव्वल रही है। सोलन जिला के परवाणु नालागढ़ नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। जिले की अर्की व कंडाघाट नगर पंचायत में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी है। इस बीच नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश की पंचायतों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार की इसी कड़ी में जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक उम्मीदवार लोगों के साथ बैठकें कर अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को सहेजने के लिए निरंतर कार्य कर रहे केलंग निवासी युवा सामाजिक उद्यमी तंजीन बौद्ध को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तंजीन बौद्ध और उनकी टीम लंबे समय से लाहौल की विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों में जुटी हुई है। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से एक 80 साल पुराने पारंपरिक घर को संरक्षित कर धरोहर केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। धर्मशाला में कल खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 8 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
4: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना।

आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब एफएम शिमला पर ये वक्त है पुराने फिल्मी गाने गुनगुनाने का। तो आनंद लीजिए पुराने दौर के इन सदाबहार शानदार गीतों का हमारे साथ एफएम शिमला पर। मैं हूँ आपके साथ स्वाति डोगरा, तो सुनते रहिए एफएम शिमला और मुस्कुराते रहिए। प्रोग्राम का पहला गाना सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, तू नहीं और सही फिल्म से, बोल असद भोपाली के, संगीत रवि का।

0: पुराने फिल्मी गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अभी ये जो गीत आपने सुना, इसमें आवाज़ें थी आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की, बोल थे एसएच बिहारी के, संगीत था रवि का। ये गीत हमने चुना था सिंदबाद अली बाबा अलादीन फिल्म से।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

रोशन का कंपोज किया ये गाना, अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। नई उम्र की नई फसल फिल्म के लिए ये गाना लिखा था नीरज ने। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें ये दुनिया पहचानती है गीतकार नीरज के नाम से, अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 130 गाने लिखे और उन्हें साथ मिला देवानंद, एस डी बर्मन और राज कपूर जैसे दिग्गज फनकारों का, जो पेशेवर से ज़्यादा दोस्ताना था। प्रेम की भाषा लिखने वाले गीतकार नीरज की खूबी ये थी कि वो सामान्य से शब्दों को खास बना देते थे। मसलन, पहले चूड़ी एक आभूषण के लिए कहा जाने वाला सामान्य सा शब्द लगता है, लेकिन एक गीत के लिए जब नीरज की कलम चली तो चूड़ी बन गया दिल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गैम्बलर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था नीरज ने और इस गाने को कंपोज किया था एसटी बर्मन ने। अगला गाना आपको सुनवाऊंगी मुकेश, सुमन कल्याणपुर और शारदा की आवाज़ों में, वर्मा मलिक का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, और पहचान फिल्म से हमने ये गाना चुना है। ये गाना आपको सुनवाऊंगी इस संदेश के बाद।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: और इसी गाने के साथ पुरानी फिल्मों से प्रोग्राम में आज बस इतना ही।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और अब आइए एफएम शिमला पर आनंद लीजिए हिमाचली संस्कृति का सलोना रंग ओढ़े इन लोक गीतों का। कार्यक्रम का शुभारंभ इस लोक भजन के साथ आवाजें जोगिंदर सिंह हावी और साथियों की।

0: ये लोकगीत आपने अभी सुना मीरा भारद्वाज की आवाज में।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

पहाड़ी लोक संगीत का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला 103.7 MHz पर। और अब ये अगले लोकगीत में सुनिए उमा तनवर और संतोष को।

0: शुभ वाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की अपनी बोली में अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
0: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: ये लोकगीत अभी आपने सुना दुनी चंद की आवाज में।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, पहाड़ी लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं हमारे साथ। और अब कार्यक्रम में ये अगला लोकगीत सुनिए राजेश टेम्टा की आवाज़ में।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये लोकगीत स्मूह स्वरों में।

0: और इसी लोकगीत के साथ अभी के लिए पहाड़ी संगीत में बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला और अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 12:20 होने को है। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं महिला सम्मेलन कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों को दीक्षा वर्मा और
1: हेमा राय का
0: नमस्कार। बहनों, क्या कभी आपके मन में भी यह सवाल आता है कि अब देखो हमें कुछ नया सीखना चाहिए जिंदगी में, है ना, और जिंदगी कहीं रुक सी रही है, ऐसा होता है कई बार?
1: जी हमारे साथ तो बहुत बार होता है।
0: हाँ,
1: क्या आपके भी मन में कुछ नया सीखने की इच्छा नहीं होती? अगर
0: बहुत
1: ऐसा है ना
0: होती है,
1: दीक्षा, तो इस आदत को बदलना बेहद
0: जरूरी है,
1: जरूरी है। और कुछ नया सीखने के सफर पे क्यों ना चलना शुरू कर दे।
0: बिल्कुल, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी जो है वो ख़राब हो जाता है ना, और
1: जी
0: जब चलता रहेगा, जब जैसे नदी बहकर ज़्यादा साफ़ सुथरी और पवित्र रहती है, उसी
1: जी
0: तरह हमारा जीवन भी है। जितना हम चलते रहेंगे इस जीवन में, जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे, रोज़मर्रा के काम के साथ कुछ नई चीज़ें भी शामिल करते रहेंगे, उतना ही हमारा दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त रहते हैं,
1: जी
0: फ्रेश
1: और
0: रहते
1: देखिए,
0: हैं।
1: जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसे करने की खुशी कितनी होती है ना।
0: हाँ
1: और ऐसे लगता है कि कुछ नया, चाहे वो खाने पीने की बात क्यों ना, कुछ अगर नई चीज़ बनाई है
0: बिल्कुल
1: या नया नया ट्राई करते, तो हमारे साथ पूरा परिवार भी खुश होता है।
0: बिल्कुल, और वो एक्साइटमेंट जो हमें अंदर से होती है ना हेमा,
1: हाँ,
0: वो
1: उनके
0: हमें
1: रिएक्शन
0: जवान
1: देखने की भी
0: रखती
1: होती
0: है
1: है,
0: ना।
1: उनके रिएक्शन की कि कैसा लग रहा
0: हाँ
1: होगा,
0: हाँ
1: चाहे वो कोई भी चीज़ हो।
0: कुछ भी, कोई भी नई चीज़ हो। और वैसे
1: जी
0: भी जब घर पे बहनें कुछ करती हैं, है ना, देखो अब हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, बहनें सुन रही हैं, वो भी
1: जी
0: समझेंगी इस बात को, हमारे बच्चे कितना ज़्यादा वो और ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं ना,
1: जी
0: वो हमें आगे
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ाते हैं कि हाँ आप ये करो, आप ये करो, कोई नई चीज़। तो ये जो खुशी है, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये खुशियाँ जो है वो बढ़ती रहें और हमेशा आती रहें, क्योंकि जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है ना हमारी
1: जी
0: सबकी, उसमें हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, और बहुत सी बहनें हैं जो व्यस्त हो जाती हैं, और उस वजह से हम कभी कभार कुछ नया सीखना
1: छोड़
0: छोड़
1: देते
0: देते
1: हैं,
0: हैं, है ना।
1: लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं
0: हाँ,
1: करना
0: नहीं
1: है।
0: करना है।
1: देखिए दीक्षा, अपनी पसंद, शौक या नए ट्रेंड के साथ हम बहुत कुछ नया
0: सीख
1: सीख सकते
0: सकते हैं।
1: हैं।
0: हाँ
1: जैसे
0: बिल्कुल,
1: कुकिंग है, स्टिचिंग है, पेंटिंग है, फिटनेस हो गया, नई भाषा हो गई, डांस या
0: जी
1: सिंगिंग, तो या कोई और कोर्स, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपकी रुचि है। दरअसल दीक्षा, होता क्या है ना कि जो न्यू स्किल यानी
0: जी
1: कुछ नया सीखना ज़रूरी इसलिए है।
0: हाँ, और ये जो जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं,
1: जी
0: तो हम लोग अपने एक तो पुराने रूटीन से हम बाहर निकलते हैं,
1: जी
0: है ना, और कुछ नई चीज़ें जब हम सीखते हैं, तो हमारा दिमाग भी थोड़ा सा, हम कहते हैं, विस्तार होता है, सोच
1: जी
0: का विस्तार हो जाता है,
1: जी
0: और हम नई चीज़ों से जुड़ते हैं, तो हमारा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये हेमा जी,
1: जी
0: बहुत हमारा जो दिमाग है उसमें, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ नया काम करता रहे,
1: जी
0: ताकि
1: बिल्कुल
0: वो लंबे समय तक जवान बना रह सके। जवान आप समझ रहे हैं ना, मतलब
1: जी
0: जवान मतलब कि हम अच्छे से अपने दिमाग को चला सके
1: जी
0: लंबी उम्र तक। तो उसके लिए बहनों बहुत ज़रूरी है कि किसी भी उम्र में कोई भी नई हॉबी को जरूर पालें।
1: जी और अगर देखिए, आपने देखा ही होगा कोविड
0: हाँ
1: काल के दौरान, अगर हम बात करें कोविड काल की, तो ठहराव हुआ,
0: हाँ बेशक,
1: मुश्किलें बढ़ी,
0: बिल्कुल,

0: पर ऑनलाइन क्लासेस और भी बहुत से माध्यमों से हमने कई नई चीज़ें बनानी सीखी और आसान भी हुआ। महिलाओं के लिए ये सब नया तो ज़रूर है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी झिझक तोड़कर कुछ नया सीखते हुए खुद को व्यस्त रखने के सफ़र में नए विचारों से मिले और अपना व्यक्तित्व
1: और निखारे
0: निखारे।
1: हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसे कोविड समय चाहे जितना मर्जी पुराना हो जाए हेमा,
0: जी,
1: लेकिन हम भूल नहीं
0: भूल नहीं
1: सकते हैं ना
0: सकते
1: उस समय का
0: जी,
1: क्या ठहराव आ गया था जिंदगी में,
0: बहुत कुछ
1: कितनी
0: सिखाया वो
1: कितना
0: समय हमें,
1: बहा,
0: बहुत कुछ सिखा
1: बहुत
0: गया
1: सिखा गया वो समय। और यही चीज़ें हमें अभी भी कहते हैं ना कि बुरे समय से सीख ले लेनी
0: जी
1: चाहिए, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल
1: तो वो सीख बहनों हमें रखनी है अपने जीवन में, कि ये जो कुछ भी नई चीज़ें हैं जो हमें या हमारी ज़िंदगी को जो बोझिल सा बना देता है हमारा
0: जी।
1: रूटीन, उसमें हम मानते हैं ये चीज़ कि व्यस्त बहुत हो जाती हैं बहनें, है ना। हम खुद बहुत मतलब समय नहीं है अपने लिए, लेकिन फिर भी कोशिश यही रखनी है कि इस ज़िंदगी को बोझिल नहीं बनने देना है। हमने जो उत्साह हमारे अंदर है उसको और बढ़ाने के लिए कुछ नई चीज़, कुछ नया अभ्यास, है ना, कोई नई
0: जी
1: हॉबी हमें ज़रूर, रचनात्मकता कोई ऐसी चीज़ करनी है जिसमें हमारी रचनात्मकता दिखे। तो
0: जी
1: वो हमें देखो व्यस्त भी करेगी हेमा, साथ में जो ऐसी बुरी है ना,
0: जी
1: बुरी बातें कुछ हम ऐसे पड़ जाते हैं
0: कई बार
1: सोच विचार
0: हमारे
1: में।
0: मन में बहुत सी नकारात्मक, यानी कि बुरे बुरे
1: हाँ
0: से ख्याल भी आते हैं। उस
1: हाँ
0: उन सब चीज़ों से
1: दूर हट
0: जब हम,
1: जाते
0: अगर
1: हैं हम।
0: जब हम नई चीज़ें सीखते हैं या कोई स्किल कर रहे होते हैं, तो उसको अच्छा परफॉर्म करने का जो भाव है ना,
1: वो भी खुशी
0: उसमें
1: देता
0: वो भी खुशी
1: है।
0: देता है, और उससे जो हमारी नेगेटिविटी है टोटली वो ख़त्म हो जाती
1: हाँ
0: है।
1: ये बिल्कुल सही चीज़ है, और इसीलिए जो नई चीज़ें हैं उसको सीखते हुए खुद को हमें समय के साथ साथ बदलना आसान हो
0: जी
1: जाता है
0: बिल्कुल
1: जब हम नई माहौल में ढलना सीखते हैं, है ना। अब क्योंकि समय बदल रहा है बहुत तेज़ी से, हम इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना, ये तो
0: जी
1: बिल्कुल हो ही रहा है। तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम भी समय के साथ साथ चलना सीख जाते हैं, और जो हमारे आसपास का माहौल है वो भी और ज़्यादा खुशनुमा सा बन जाता है।
0: जी तो बहनों, सीखने को उलझन बनाने की बजाय सीखने का सहज सफर उसे समझें। पसंद की कोई स्किल हमेशा महारत करने के लिए नहीं सीखी जाती,
1: बिल्कुल
0: यानी कि हमें जरूरी नहीं
1: जरूरी
0: कि
1: नहीं कि
0: हम
1: उसमें
0: उसमें
1: हाँ
0: हम
1: टॉप ही
0: परफेक्ट ही
1: करना
0: हो
1: है।
0: जाएंगे या उसमें हम फर्स्ट ही आएंगे,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बहुत
0: उससे
1: अच्छी बात
0: हमारी
1: है।
0: पर्सनैलिटी बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे,
1: हाँ
0: और हमें जो
1: आत्मविश्वास जो
0: जी
1: आता है कि नहीं
0: और
1: मैं
0: इतनी
1: कुछ
0: खुशी मिली। कई बार ऐसा होता है ना दीक्षा, छोटों से भी बहुत कुछ सीखने को
1: बहुत
0: मिलता है,
1: बिल्कुल
0: और कितनी खुशी होती है, देखो हमें इनसे सीखने को मिला और हमने
1: बिल्कुल
0: बहुत कुछ हासिल किया।
1: बिल्कुल। तो ये
0: तो
1: सब चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में लानी है, खुद पे कोई दबाव नहीं बनाना है,
0: जी
1: बल्कि बिना किसी डर के बहनों नया कुछ सीखने के सफ़र को जारी रखना
0: जी
1: है।
0: और हम भी अपने सफर को जारी
1: जारी
0: रखते हैं और
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं ये गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो दीक्षा कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। ये आकाशवाणी है बहनों, ये तीन शब्द आपने कई बार सुने होंगे। जी हाँ, आकाशवाणी मतलब आकाश से आने वाली वाणी।
1: बिल्कुल।
0: और ये सिर्फ आवाज़ ही नहीं, ये एहसास है, ये साथी है उन लम्हों के जो हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
1: सब पर
0: सब
1: है
0: रेडियो
1: ना
0: पर उद्घोषकों, कार्यक्रम और उस पर
1: जी,
0: बजने वाले गीतों पर
1: असर
0: असर
1: डालते हैं।
0: डालती है।
1: बिल्कुल। और ये जो आकाशवाणी है, हर उम्र के लोगों के साथ जुड़ी हुई है ना।
0: जी
1: इसे हम ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जानते हैं बहनों। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1957 में इसे आकाशवाणी का नाम मिला था। और आकाशवाणी हमारी जो है वो इतने लंबे सफ़र की साथी रही है।
0: जी
1: और अभी आप जानती हैं कि ये वर्ष हम आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं,
0: जी
1: जश्न मना रहे हैं। और हेमा, जश्न कभी रुकता नहीं है ना।
0: जी
1: जश्न की खासियत ही है कि वो चलता जाता है और उसमें सब खुशी मनाते हैं। और हम भी याद कर रहे हैं कि कैसे आकाशवाणी जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा है ना पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है। और पूरी दुनिया भर में इसने अपनी आवाज़ पहुंचाई हुई है।
0: जी ये केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग है।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, आकाशवाणी जिसे कभी रेडियो का पर्याय माना जाता था, आज डिजिटल युग में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है।
1: बिल्कुल।
0: बीते 90 वर्षों से जिस तरह तकनीक में क्रांति आई, उसी के साथ आकाशवाणी ने भी अपने आप को निरंतर निखारा है।
1: ये बात बिल्कुल सही कही हेमा। और प्रारंभ में हम बात करें तो इसके सिर्फ थोड़े बहुत प्रसारण केंद्र थे, है ना। लेकिन अब जो है आकाशवाणी FM, DTH, मोबाइल ऐप, जैसा कि
0: जी
1: हम बहनों से बात कर रहे हैं और बहनें जानती हैं कि अब ज़माना है, बदल गया है, डिजिटल हो गया है। तो ऐसे में हमारी आकाशवाणी भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। आकाशवाणी अभी भी आधुनिक प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध हो चुकी है। और डिजिटल इंडिया की जो पहल की बात हम करते हैं, इसके तहत आकाशवाणी ने भी हेमा है ना न्यूज़ ऑन
0: न्यूज़ ऑन एयर
1: AIR और देखो आकाशवाणी लाइव जैसे मोबाइल ऐप के जरिए ये भी पहुँच गया है लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए।
0: जी हाँ। देखिए दीक्षा,

0: प्राकृतिक आपदा हो या युद्ध हो या किसी भी संकट की घड़ी, आकाशवाणी सबसे तेज और प्रामाणिक सूचना देने वाला
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: साधन बनकर हमेशा से सामने ही आया है।
1: बिल्कुल। और लाखों लोगों को हम अगर कहें कि आकाशवाणी दिशा दिखा रहा है तो
0: जी
1: गलत नहीं कहेंगे हम,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: और आकाशवाणी अब तो वैसे भी पहुंच से दूर रही नहीं है, अपने फ़ोन पे हम सुन सकते हैं कहीं पर भी। पहले तो देखो समय होता था हेमा, आप
0: जी
1: भी इस्तेमाल करती थी
0: जी
1: जैसे ना,
0: बिल्कुल
1: हमारे पास होता था तो रेडियो लेकर हम बैठ जाते थे,
0: जी
1: फिर उसको बॉक्स को या तो बिजली से चलाएंगे या चलो सेल से भी चलता था तो
0: जी
1: ले जा सकते थे सारे में,
0: और ये था कि जब हम कहीं कुछ काम करें तो उसे हमारे
1: लगा के
0: देखिए
1: रखते थे
0: गांव
1: बहुत।
0: के
1: हाँ
0: उसमें खेतों में लेके जाते
1: भाई वो
0: थे,
1: ज़रूरी,
0: हाँ,
1: आकाश
0: या
1: रेडियो
0: कोई
1: तो
0: घर पे भी
1: ज़रूरी
0: काम
1: होता
0: कर रहा
1: था।
0: था तो एक रेडियो बजता था और सभी
1: हाँ
0: सुनते थे,
1: बिल्कुल
0: बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी इसी को।
1: सुनते थे
0: जी
1: बिल्कुल। वो नहीं मतलब अभी भी कहीं दिमाग में वही, जब पुराना समय याद करने लगते हैं तो दिमाग में अभी भी फिर से वो ध्यान आता है कि रेडियो तो एक अभिन्न अंग था
0: जी
1: जैसे कि।
0: और अभी भी अभिन्न अभिन्न अंग बना हुआ है, क्योंकि
1: हाँ
0: देखिए जो भी हमारे कामकाजी जो महिलाएं हैं वो अपना काम करती हैं, सुनती
1: हाँ
0: रहती
1: अभी
0: हैं,
1: भी सुन
0: और भी बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो अपना कोई दुकान पे है, कोई घर पे है, या कोई अपने वर्क प्लेस पे है, तो वो भी रेडियो लगा है, अपना
1: हाँ
0: काम
1: जुड़े
0: कर रहे
1: हैं
0: हैं।
1: किसी ना किसी रूप
0: जी
1: से हम। और अब देखिए बहनों पहुंच इतनी आसान है, अब तो मोबाइल ऐप पर है ना, वेब रेडियो अब है, पॉडकास्ट के जरिए भी, युवा पीढ़ी की बात करें तो वो पॉडकास्ट के जरिए भी इससे जुड़ सकते हैं। तो
0: जी
1: यानी तकनीक ने ना केवल रेडियो की पहुंच को बढ़ाया है बल्कि कंटेंट की गुणवत्ता को भी बढ़ा दिया है
0: जी
1: ना।
0: और आकाशवाणी एक माध्यम ही नहीं, एक भावना है
1: भावना है
0: जो
1: बिल्कुल
0: देश की धड़कनों को सुनती और
1: सुनाती
0: सुनाती
1: है,
0: है।
1: बहुत बढ़िया बात।
0: आधुनिक समय में इसकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये न केवल अतीत की विरासत है बल्कि भविष्य की संभावनाओं का
1: द्वार
0: द्वार
1: भी
0: भी
1: है,
0: है।
1: ये बहुत सही बात कही, इससे इतनी जानकारियां मिलती हैं हमको और यही है जो इस जश्न को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है।
0: जी
1: तो अब हम भी बहनों को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
0: जी

0: तो हेमा, आज जो है हमारे बहनों के लिए हम खास चीज़ लेकर आते हैं, है ना, परवरिश
1: जी
0: के अंतर्गत हमारा सेगमेंट रहता है सोमवार वाले दिन, और इसमें हम बहनों से बात करते हैं अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों की, उनके
1: जी
0: लालन पालन की, कि किस तरीके से हमें कोशिश करनी है इस नई जनरेशन को जो
1: जी
0: बहुत ज़्यादा हमारे हम लोगों से आगे है हर चीज़
1: जी
0: में, उनको,
1: और उनके
0: हाँ,
1: व्यवहार के बारे में, उनकी
0: उनको
1: समस्याओं
0: कैसे
1: के बारे
0: समझना है,
1: में,
0: बिल्कुल,
1: कैसे उसके बारे में हम समझ सकते हैं, कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं।
0: हाँ, हैंडल करना ज़्यादा सही शब्द है, समझाना भी हम कह नहीं सकते
1: जी
0: क्योंकि आज के बच्चों को समझाना थोड़ा सा एक मुश्किल सा काम आ जाता है, तो पर उनकी समस्याओं को हमें ज़रूर सुनना और समझना है, तो हम यही बात करने वाले हैं आज बहनों से, कि अब सबसे बहुत एक विषय एक ऐसा
1: जी
0: है ना, गंभीर विषय ये है कि जो हमारी आजकल की जनरेशन जो है, जब छोटे छोटे बच्चे आपस में मिलते हैं,
1: जी
0: जब हमारे छोटे छोटे बच्चे आपस में मिलते हैं, है ना, तो उनमें कभी कभी झगड़े हो जाते हैं नन्हे
1: जी
0: मुन्नों के बीच में।
1: यानी हम उम्र के बच्चों के झगड़ों के बारे में, शायद दीक्षा हर घर में रोज ही हमारे नन्हे मुन्नों की बात हो या थोड़े बड़े बच्चों की, झगड़े तो इनमें होते ही रहते हैं। और सच कहें तो जब भी हम अपने बचपन में खो जाते हैं तो इस तरह के झगड़ों या बहस को याद करके ना ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि हम भी अपने बचपन में लौट जाते हैं। वो एक याद की तरह हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जो कि हमें हमारे बचपन की मधुर स्मृतियों को ताज़ा कराते हैं।
0: बिल्कुल, और कई बार हम ये वाला एक वाक्य तो हम सभी कह देते हैं हेमा, कि भाई बच्चे हैं
1: जी
0: ऐसे ही झगड़ेंगे, है ना, बच्चे
1: जी
0: ही झगड़ते हैं, क्या करना, थोड़ी देर झगड़ेंगे फिर और मान जाते हैं, और कभी भी बच्चे झगड़ रहे हो तो उसमें बस ये है कि हम बेशक अपनी कितनी मधुर स्मृतियों में खोए हुए हों, लेकिन कभी भी हमारा जो दखल है वो बच्चों के बीच में हमने नहीं करना
1: हाँ,
0: है।
1: कितना होना चाहिए, यानी कि कब
0: हाँ
1: हमें चुप
0: वैसे
1: रहना है और
0: कब
1: कब
0: बोलना है,
1: उनके
0: सही
1: मन
0: बात है।
1: मुटाव को सुलझाने में मदद करना है, तो क्यों ना इस बारे में ही हम अपनी बहनों से और बात करें।
0: बिल्कुल, अब देखिए हम उम्र भाई बहन होते हैं, है ना, उनके बीच में होने वाली तकरार
1: लंबी
0: ज़्यादातर
1: होती है,
0: कैसी होती है, दोस्ताना
1: दोस्ताना
0: होती है, और
1: होती है,
0: खूब
1: जी
0: लड़ाई होती है, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, और पहले लड़ते हैं थोड़ी देर के
1: एक
0: बाद
1: पल के लिए तो दुश्मन बन जाते हैं एक
0: बहुत
1: दूसरे के
0: खतरनाक,
1: और दूसरे पल में ही दोस्त बन जाते हैं।
0: बिल्कुल गप्पे मारते नजर आते हैं। इसीलिए जब बच्चों के बीच में बहसबाजी चल रही हो हेमा, तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वहीं अगर
1: जी
0: बात हाथापाई
1: एक
0: तक
1: दूसरे
0: आ
1: को
0: जाए ना,
1: पिटाई की
0: हाँ,
1: बात आ जाए तो
0: तो
1: हमें
0: रोकना
1: बीच बचाव
0: चाहिए
1: करना भी बेहद
0: ज़रूरी
1: ज़रूरी है।
0: ज़रूरी हो जाता है।
1: होता
0: और
1: क्या है ना दीक्षा, देखिए
0: हाँ
1: माफ़ करना आपकी
0: हाँ
1: बात
0: नहीं
1: काट ली
0: प्लीज़
1: मैंने,
0: हाँ
1: एक ही उम्र के भाई बहन के
0: हाँ
1: बीच मुकाबले की स्थिति बने रहने की वजह जो होती है ना, उनका हमेशा एक साथ रहना और हम
0: हम
1: उम्र
0: उम्र
1: का
0: होना है,
1: होना
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल सही
1: देखिए
0: बात है।
1: परिवार में ही बच्चा अपने भाई बहन के साथ होने वाली अपनी कुट्टी मिट्टी से मतभेदों को सुलझाना सीखता
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल
1: उनके बीच जो झगड़े होते हैं ना तो कोई उनका कारण होता है जिसे ये सही या गलत ठहराने के लिए वो माता पिता के पास भागते हैं, और यहाँ से माता पिता का रोल जो है

0: शुरू
1: शुरू होता
0: होता
1: है
0: है। मुझे तो बात करते ही बहनों से हंसी आ रही है और बहनें भी थोड़ा मुस्कुरा रही होंगी। बच्चों की बातें और उनकी लड़ाई झगड़े, ना उसकी कोई वजह है ना कुछ
1: जी
0: कारण है, वैसे ही शुरू हो जाते हैं। फिर
1: जी
0: हमारे पास आकर वैसे ही कुछ कहने लगते हैं। तो बच्चे जो हैं, इनके बीच के मतभेद के कारण कुछ हमारा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब हमारे पास बच्चा आता है ना, तो हम भी अगर ज़्यादा भड़क जाएं या हम गलत का साथ ले लें, या
1: जी कई
0: मतलब
1: बार बिना
0: ऐसा
1: सोचे
0: ना हो।
1: समझे हम दूसरे को ही पीट गए जिसकी
0: हाँ,
1: गलती
0: कई
1: नहीं थी।
0: तो
1: होता है
0: कई
1: ना ऐसा
0: हाँ
1: कई
0: हो
1: बार?
0: सकता है कई बार। तो कई बार हमारा व्यवहार भी, या फिर हम ऐसा भी होता है हेमा कि एक घर के बच्चे ही नहीं, कभी कभी
1: जी
0: पड़ोस के बच्चे, आजकल
1: जी
0: अकेले अकेले हैं सबके बच्चे, तो कभी
1: जी
0: पड़ोस के बच्चे या कोई और भी आ जाए, तो गलती से ऐसा ना हो बहनों कि हम गलत की तरफ चले जाएं और हमारा व्यवहार भी, क्योंकि बच्चों के बीच में मतभेद का कारण बन सकता है।
1: जी और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के बीच में मतभेद का कारण ये होता है कि जो बड़े जो
0: हाँ,
1: भाई बहन है वो छोटों का
0: उनका
1: ख्याल रखते हैं और इस जिम्मेवारी
0: सही
1: की वजह
0: बात
1: से ना
0: है,
1: वो खुद भी कई बार ठीक से खेल नहीं पाते। और बड़े बच्चे पर कई बार हम ना ये
0: प्रेशर भी
1: सोचने
0: डाल
1: वाली
0: देते
1: बात है,
0: हैं
1: इतनी
0: ना,
1: जिम्मेवारी डाल देते हैं कि उनका
0: तुम
1: ना
0: ही
1: डालने
0: ध्यान
1: कि उनका
0: रखो।
1: बचपन ही
0: हाँ,
1: खो जाए।
0: सही
1: उसे
0: बात है,
1: काम ले, उनसे काम कम, देखिए मदद तो लेनी ही पड़ती है, थोड़ा खेल खेल में उन्हें शामिल करें वरना वो अपने छोटे भाई बहन से ना चिढ़ने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो माता पिता का व्यवहार जो है वो अपने बच्चों के लिए, बेटा बेटी दोनों के लिए है ना, एक निष्पक्ष होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बेटियों को भी
1: ज्यादा
0: ज़्यादा
1: महत्व दे देते
0: प्यार से
1: हैं
0: रखते हैं, कई बार
1: और
0: बेटों को कर देते हैं कि नहीं,
1: जी
0: ये नहीं करेगा वो नहीं
1: आजकल तो ऐसा है कि बेटियों को ज्यादा महत्व
0: प्यार
1: इसलिए
0: से
1: देते
0: रखते
1: हैं,
0: हैं।
1: और ये भी कहते हैं ना अपने खासकर अपने पेरेंट्स में पापा की ज्यादा लाडली होती है लड़कियां, तो वो यही बात वो बोलते हैं कि वो कल
0: इनकी वजह
1: शादी
0: से
1: होगी
0: तुम
1: वो कल
0: मेरा
1: चल जाएगी,
0: ध्यान
1: और बेटा इस बात को समझ नहीं पाता कई बार, और बहन के मुकाबले उसको इतनी तवज्जो नहीं देती। दोनों के स्पेस को बराबर प्यार और उन्हें स्पेस दें
0: हाँ
1: ताकि
0: बिल्कुल,
1: उन्हें भी ना लगे, बेटे को भी ना लगे कि इसी को ज्यादा वो दिया
0: प्यार
1: जाता
0: किया
1: है
0: जा
1: घर।
0: रहा है, तवज्जो दी जा रही है,
1: जी जी
0: बिल्कुल। और
1: जी
0: है उम्र की बात, जब बड़े हो जाते तो खुद
1: तो सब
0: समझ
1: समझ
0: जाते
1: जाएंगे।
0: हैं,
1: जी
0: लेकिन शुरू में बहनों हमें ध्यान रखना है कि अपने बच्चों की जो उनकी शख्सियतें हैं उसका ध्यान रखना है, उनके ज़रूरत के हिसाब से हमें बच्चों को ठीक से दुलार करना है, प्यार करना है, उनकी फरमाइश को पूरा करना है ना,
1: जी
0: ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो कम से कम वो समझें हर चीज़, आपके
1: जी
0: एक्शन के पीछे भी समझें और वो
1: जी
0: खुद भी सीखें कि हमने किस तरीके से अच्छे से काम करना है और किस तरीके से आपस में मेलजोल के साथ रहना है।
1: जी हाँ और देखिए रिक्शा होता है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग और ख़ास है, उसकी तुलना भाई या बहन से करते हुए कमतर साबित करने की हमें गलती नहीं करनी है। सारे बच्चे पढ़ने में तेज़ नहीं होते और सबके अलग अलग हुनर होता है, उसे
0: बिल्कुल,
1: सराहें और विकसित करने में मदद
0: मदद करें,
1: करें।
0: बिल्कुल।

0: हेमा, देखो हमारा जो है वो ज़्यादातर ध्यान, हमारा और बहनों का भी ज़्यादातर ध्यान इसी बात पे रहता है कि कैसे हम बचत करें, है ना, कम से कम खर्चा करें और जो हमारे जो पैसे हैं उनको हम बचाएं। और
1: जी
0: बहुत ज़्यादा कोशिशें भी बहनें करती हैं इस चीज़ के लिए, कामयाब भी होती हैं, उसमें
1: जी
0: कोई शक नहीं है। और कुछ चीज़ें लेकिन ऐसी है कि कभी कभी हमारे ध्यान से या किसी के ध्यान से निकल जाती है, जैसे कि किचन में हम सबसे ज़्यादा वहाँ पर काम करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा बिजली और सब चीज़ें हमारी किचन में इस्तेमाल होती
1: जी
0: हैं,
1: जैसे
0: इतने
1: कि हमने कुछ,
0: अप्लाइंस हैं
1: जी
0: हमारे पास, है
1: जैसे
0: ना।
1: कोई हम कुछ काम कर रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन हमारा ऑन रह गया, तो वो क्या होता है कि हम काम करके चले भी जाते हैं, एग्जॉस्ट
0: हाँ,
1: फैन
0: कई बार
1: ऑन ही रह जाते हैं।
0: ध्यान से निकल जाता
1: तो
0: है।
1: ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम अपना के हम अपने जो है बिजली की बचत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कुछ चीज़ें हमारे फ्रिज के साथ जुड़ी हुई है ना, कभी कभी उसमें अगर बहनों बहुत मोटी बर्फ़ की परत जम जाती है तो
1: जी
0: डिफ्रॉस्ट उसको करते रहना चाहिए, उससे उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि चौथे दिन में या फिर सप्ताह में कोई एक दिन डिफ्रॉस्ट करने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि वो ज़्यादा ठीक है, उससे बिजली की थोड़ी बचत होती है।
1: जी वैसे तो देखिए आजकल ऑटो डिफ्रॉस्ट वाले आ
0: हाँ,
1: गए हैं,
0: फ्रिज
1: तो
0: भी आ
1: उसमें
0: गए
1: ज़रूरत नहीं
0: हैं।
1: है, लेकिन जो पुराने हैं उनमें अभी भी करना होता है। तो आप ध्यान रखें कि ताकि बिजली की खपत कम हो।
0: और ये ऐसा तो बहुत बार होता है कि कुछ काम, मतलब बर्तन भूल जाते हैं कि यार फ्रिज से ये निकालना है, फिर थोड़ी देर के बाद और फ्रिज
1: फिर
0: के
1: खुलते
0: पास
1: हैं,
0: पहुंच
1: हाँ
0: जाते हैं और
1: जी।
0: खोलते हैं कि
1: और कई
0: अब
1: बार तो ये होता है कि
0: रखना
1: हम
0: है
1: उस
0: निकल,
1: बर्तन को किचन तक छोड़ने जाते हैं और फ्रिज
0: फ्रिज
1: का
0: खुला
1: दरवाजा
0: रखते
1: खुला
0: हैं।
1: ही
0: हाँ,
1: रखना।
0: ऐसा
1: तो ऐसी
0: हो
1: छोटी
0: जाता
1: छोटी जो
0: है।
1: लापरवाही है वो हमें नहीं करनी, ताकि बिजली की बचत हम कर सकें और कम से कम इस्तेमाल करें।
0: जी, और क्योंकि 30 सेकंड से अगर ज़्यादा हम फ्रिज को रखते हैं खुला तो कंप्रेसर पर धीरे धीरे दबाव पड़ने लग जाता है और वो ख़राब हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। और हेमा, अगर फ्रिज ख़राब हो जाता है, कई बार हम छोड़ देते हैं कि काम तो कर रहा है ना, ठंडा
1: जी
0: तो कर रहा है खाना, कभी उसे देखो कितनी ज़ोर ज़ोर
1: कड़कड़ाने
0: की,
1: की
0: हाँ,
1: आवाज़ आती
0: आवाज़
1: है।
0: सी
1: जी
0: आने लग
1: जी
0: जाती है, तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना है बहनों। अगर आपकी किचन में भी फ्रिज से ऐसी आवाज़ आ रही है तो उसको ज़रूर दिखा लें,
1: जी
0: वो ठीक नहीं है फ्रिज के
1: जी
0: लिए।
1: और क्या करते हैं ना दीक्षा, कई बार हम अपने फ्रिज को ना सब्जियों और फलों से बुरी
0: भर
1: तरीके से
0: देते
1: ओवरलोड कर
0: हैं।
1: देते हैं, यानी कि
0: हाँ,
1: ठूस ठूस के उसमें भर देते हैं, और फ्रिज के कंप्रेसर की क्षमता उसके स्पेस के हिसाब से तय होती है। अधिक सामान भर देने से इस पर दबाव बढ़ता है और बिजली जो है वो ज़्यादा खर्च होती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि पहले आप एक लिस्ट बना लेना कि कौन सी चीज़ आपको कब चाहिए, उस हिसाब से सामान लाएं और उस हिसाब से अपने फ्रिज का इस्तेमाल करें।
1: जी
0: और आजकल गर्मियां भी हैं, वैसे हम कई बार मन करता है कुछ बना दिया, कस्टर्ड बना दिया खासकर,
1: जी
0: और हम चाहते हैं फटाफट
1: आइसक्रीम
0: ठंडा
1: बनाती
0: हो
1: हमारी
0: जाए।
1: बहनें, बहुत कुछ
0: हाँ,

0: बनाती हैं?
1: बहुत कुछ। आइसक्रीम तो चलो ठंडी है ना पहले ही, अब जैसे कस्टर्ड बनाया, चाहिए कि फटाफट खाना है हमें, है ना, खीर बनाई फटाफट खानी है, तो हम करते हैं कि चलो
0: गर्मा गर्म
1: गर्म, हाँ जल्दी हो जाएगा ठंडा। बहुत सारी चीज़ों के लिए कर देते हैं, दूध उबाल दिया तो सोचते हैं कि खराब ना हो जाए, समय नहीं होता तो रख देते हैं थोड़ा सा गर्म में,
0: हमें कहीं निकलना है, निकलना है, तो ऐसा लगता है कि
1: खराब ना हो जाए,
0: खराब ना हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसा करने से क्या होता है ना दीक्षा, इसकी कूलिंग करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, और पहले गर्म चीज़ों को कमरे के तापमान पर ले जाएं और फिर फ्रिज में रखें।
1: बिल्कुल। और अच्छे से एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर फ्रिज को लंबे समय तक चलाना है, क्योंकि वो वोल्टेज के जो बदलाव है उसको सह लेता है
0: जी,
1: है
0: और
1: ना?
0: फ्रिज को कभी भी चारों तरफ से बंद जगह पे नहीं रखें, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हवा का आगमन होता रहे।
1: बिल्कुल। तो साथ में कई बार देखो उसकी जो रेफ्रिजरेटर की कॉइल है ना,
0: जी
1: उसको भी वो बहुत गंदी
0: हो जाती है, क्योंकि वो पीछे होती है ना, कई बार हाथ
1: ध्यान
0: नहीं
1: पहुंचता
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप खिसका के उसे साफ करें ताकि
1: उसमें ट्रे में पानी भर जाता है, उसको भी टाइम टू टाइम खाली करना है और उसको कॉइल को साफ करना है। किसी फ्रिज में वो पिछले हिस्से में और नीचे जैसे भी होता है तो उसको भी हमें साफ करते रहना चाहिए ताकि,
0: और इसके साथ ही देखिए जो लिक्विड जो भी हम फ्रिज के अंदर रखते हैं उसे खुला भी नहीं छोड़ना है। उसमें क्या होता है ना कि फ्रिज के अंदर नमी अधिकता हो जाती है, उसे कंप्रेसर पर को और ज़्यादा काम करना पड़ता है और बिजली की खपत ज़्यादा होती है।
1: बिल्कुल। तो ये तो हुई बहनों फ्रिज की बात, कि फ्रिज से हम कैसे अच्छे से इस्तेमाल करके बिजली की खपत कर सकते हैं, वैसे ही और अप्लायंसेस के भी हम कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, है ना हेमा?
0: तो अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।
1: हाँ बिल्कुल।

0: अभी आप महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ट्यून किया है आपने एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब एफएम शिमला पर ये वक्त है म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का। तो कुछ बढ़िया बढ़िया से गाने एंजॉय कीजिए हमारे साथ, ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: मोहब्बत है। मोहब्बत फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना विनोद राठौर और सोनू निगम की आवाजों में।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में हद कर दी आपने फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग। एंजॉय कीजिए एफएम शिमला पर।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। और अब अगला गाना एंजॉय कीजिए फिजा मूवी से आशा भोसले की आवाज़ में।

0: बिन पायल नाचिए या घुंघरुओं के साथ, आई एम श्योर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने डांस ना किया हो। मूड चेंज करने में डांस कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ना, स्ट्रेस रिलीज करने में है डांस जो है बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप रोज़ जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो भी जुम्बा जैसा जो डांस फॉर्म है उसकी हेल्प से आप जो है वर्कआउट कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और एंटरटेनिंग भी हो जाता है। आप चाहे वर्कआउट के टाइम पे गाने इंजॉय कीजिए या कभी भी गाने इंजॉय कीजिए, चाहे डांस को आप एक एंटरटेनिंग फॉर्म में यूज़ करते हो या फिर आप सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट करने के लिए या नया डांस फॉर्म सीखने के लिए भी अगर आप डांस करते हैं, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने मूड को ना एकदम खुश रखिए और यूँ ही सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम FM शिमला पर।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। अलका याग्निक और शान की आवाजों में सुनिए ये गाना।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से ये गाना सुनवाऊंगी आपको कुछ ही देर में।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और अब प्रोग्राम का ये आखिरी गाना प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए, जावेद अली और सोनू निगम की आवाजों में, ये गजनी फिल्म से।

0: और इसी मेलोडियस गाने के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज बस इतना ही।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और अब एंजॉय कीजिए संगीत के विविध रंगों से सजा प्रोग्राम सबरंग। देशभक्ति हो या प्रभु भक्ति, गजलें हो, सूफी कलाम या कव्वाली, विरह के गीत हो या प्रेम भरे दिल की पुकार, गीत संगीत के इन्हीं जज्बातों और रंगों से सजा है ये कार्यक्रम सबरंग।

0: और इसी के साथ सब रंग प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया।

0: केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य

0: यह साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्जवल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और

0: सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: MHz पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ, और अब FM शिमला पर कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम शिखरों के स्वर।
2: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
3: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।
1: कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए ये लोकगीत सूरज मेहता की आवाज में।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

सादे कपड़े, देसी साज, कितने खूबसूरत हैं हम पहाड़ियों के रिवाज। और इन पहाड़ों की खूबसूरती और यहाँ की लोक परंपराओं का आनंद अगर आप लेना चाहते हैं तो जुड़िए आकाशवाणी FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। यहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं हिमाचली लोक संस्कृति का इन लोक गीतों के माध्यम से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और शिखरों के स्वर कार्यक्रम, इस समय आप सुन रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों, हर भारतवासी के दिल में गांव बसता है और अपने गांव या कस्बे से जुड़ाव हम सबसे ज़्यादा तब महसूस करते हैं जब अपनी बोली में या स्थानीय बोली में कोई लोकगीत सुनते हैं, और वो लोकगीत जो हमें ले जाते हैं गांव के साफ वातावरण में जहां पर हमारा बचपन कभी बीता था उस देहाती जीवन में। और ये लोकगीत एक बार फिर से हमें उन्हीं यादों को जीने का बहुत ही प्यारा मौका देते हैं। तो आइए एक और लोकगीत एंजॉय करते हैं यहाँ एफएम शिमला पर। आवाजें हैं इस लोकगीत में दिव्यांशु और जतिन की। सुनते रहिए एफएम शिमला और मुस्कुराते रहिए।

0: ये लोकगीत अभी आपने सुना विपिन कुमार की आवाज में।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर शिखरों के स्वर कार्यक्रम में। हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ज्वाला प्रसाद शर्मा और अक्षर सिंह परमार को।

0: इसी मधुर लोकगीत के साथ शिखरों के स्वर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। साथ ही एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में शहरी निकायों के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि नगर पंचायत व नगर परिषदों में पार्टी की एक तरफा जीत हुई है। कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
1: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय है।
0: केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए और सभी को बिना थके लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के सभी लोगों से पर्यावरण असंतुलन, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य जागरूकता की कमी और नशे जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम में पंजाब, हिमाचल और दिल्ली से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से ही इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है और इसमें समाज की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व किसी पद पर आसीन होना नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलना, समाज की आवश्यकताओं को समझना और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। राजधानी शिमला में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। इस हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि सोसाइटी के लगभग 800 कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
3: हमारे कर्मचारी जो अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं और ये एस्मा चलो डीसी साहब ने लगा दिया, मगर डीसी साहब को हमने भी कई बार मांग पत्र दिया। डीसी साहब ने आज तक 4 साल में कोई भी वार्तालाप हमारे निगम प्रशासन से नहीं करवाई है। साफ साफ कर्मचारियों के विरुद्ध में पूरा प्रशासन बैठा है। अभी तो हमारी कोई बात प्रशासन से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है। अभी जब तक कॉल नहीं आती है तब तक हमारी स्ट्राइक है जो कंटिन्यू ही जाएगी।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत का हरित पथ, संरक्षण से जलवायु कार्यवाही तक। वाचक

0: पर है राकेश शर्मा का।
1: 21वीं सदी में विकास और पर्यावरण के बीच संबंध नीति विमर्श के हाशिए से उठकर राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। भारत के लिए जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के साथ तेज आर्थिक वृद्धि का संतुलन बनाना खासतौर पर जटिल काम है। भारत के हरित पथ की कुंजी ये समझ है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास राष्ट्रीय प्रगति के एक दूसरे को मजबूत करने वाले स्तंभ है। इस दृष्टिकोण में जलवायु परिवर्तन की मौजूदा वास्तविकता को ध्यान में रखा गया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी क्षेत्रों में ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है, लिहाजा देश ने इससे दूर का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की विकास की वास्तविकता के रूप में लिया है, जिसके लिए तैयारी और सक्रिय शमन की जरूरत है। इसके अनुरूप भारत ने एक ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है जो जैव विविधता संरक्षण को मजबूती देते हुए जलवायु अनुकूलता का निर्माण करता है और संवहनीय विकास को बढ़ावा देता है। भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु न्याय, समानता और संवहनीय विकास के लिए एक विश्वसनीय आवाज़ के रूप में उभरा है। इसका दृष्टिकोण दिखाता है कि संरक्षण और जलवायु कार्रवाई दोनों ही विकास को मजबूत करने वाले स्तंभ हैं। यह स्पष्ट करता है कि नागरिकों की समृद्धि और पृथ्वी का संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत दुनिया के 17 अत्यधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दुनिया के कुल भूभाग का केवल 2.4% हिस्सा होने के बावजूद यहाँ दुनिया भर में दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये देश 96,000 से अधिक पशु प्रजातियों और 47,000 पादप प्रजातियों का घर है, जिसमें दुनिया की लगभग आधी जलीय पादप प्रजातियां भी शामिल हैं। ये असाधारण प्राकृतिक विरासत संरक्षण को केवल एक पर्यावरणीय चिंता ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बना देती है। भारत ने वन्यजीवों के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क 2014 में 745 से बढ़कर 2025 में 1,134 हो गया है। जानवरों के आवासों को आपस में जोड़ने और उनके सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव गलियारों की पहचान की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर 2014 में 46 बाघ अभयारण्य थे, जो 2025 तक बढ़कर 58 हो गए हैं और लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैले हैं। इनमें सबसे नया जोड़ा गया अभयारण्य मध्य प्रदेश का माधव बाघ अभयारण्य है। अखिल भारतीय बाघ आकलन का छठा चरण शुरू हो गया है। ये पिछली गणना पर आधारित है जिसमें 2022 में 3,167 बाघ दर्ज किए गए थे। भारत प्रमुख भूदृश्यों में 32 पहचाने गए बाघ गलियारों के माध्यम से पर्यावास की कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करता है, जिससे दीर्घकालिक संरक्षण योजना और आनुवंशिक प्रसार को मजबूती मिलती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 2014 में हाथी अभयारण्य की संख्या 26 थी, जो 2025 में बढ़कर 33 हो गई है। इस विस्तार के कारण 8,610 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र हाथियों के संरक्षण के दायरे में आ गया है। वर्तमान में 15 राज्यों में 150 हाथी गलियारे चिन्हित किए गए हैं, जो हाथियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। 2025 में प्रोजेक्ट चीता का विस्तार किया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को छोड़ा गया। नियोजित विस्तार में नौरादेही और बन्नी घास के मैदान शामिल है। दिसंबर 2025 तक चीतों की कुल आबादी 30 तक पहुंच गई है, जिसमें भारत में जन्मे 19 शावक शामिल हैं। भारत ने 2019 और 2023 के बीच पहली राष्ट्रव्यापी हिम तेंदुए की गणना को पूरा किया। भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 है। लद्दाख में 477 और उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए दर्ज किए गए। वहीं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत 2021 में से 2023 तक किए गए देशव्यापी सर्वेक्षण में 6,387 नदी में रहने वाली डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है। वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान प्रजातियों के संरक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय स्तरीय परियोजनाएं, जिनमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल शामिल हैं, और नदी में रहने वाली डॉल्फिन, बाघ, हिम तेंदुआ और बस्टर्ड के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजनाएं और फील्ड गाइड जारी किए गए हैं, ताकि उनकी संख्या का सटीक आकलन और वैज्ञानिक तरीके से निगरानी की जा सके। इसके साथ ही सामयिक चर्चा सम्पन्न हुई। नमस्कार।
0: आकाशवाणी शिमला, FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के

0: हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था भारत का हरित पथ संरक्षण से जलवायु कार्यवाही तक। वाचक स्वर था राकेश शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी FM शिमला के साथ।
2: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
3: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।
1: और अब FM शिमला पर ये वक्त है ओल्ड हिट्स प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में आप एंजॉय करेंगे आज 50 और 60 के दशक के कुछ सुपरहिट गाने। तो प्रोग्राम की शुरुआत इस कव्वाली के साथ हम कर रहे हैं। बरादरी फिल्म से हमने ये कव्वाली चुनी है। मुबारक बेगम, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, बारा बंकवीन और शाद का संगीत, बोल कुमार के।

Lüschke, Lüschke, Lülische. Lüschke, Lüschke.

0: कसम अंधे हो गए हम कैनी लाइट लाइट लाइट कैनी लाइट
1: तू मेरा कॉफी ड्राइव मैं

0: शैलेंद्र का लिखा ये मस्ती भरा गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और शरारत फिल्म के लिए ये गाना कंपोज किया था शंकर जयकिशन ने। अगला गाना आपको सुनवाऊंगी कमल बरोट की आवाज़ में, रामू दादा फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना जिसे कंपोज किया है चित्रगुप्त ने, ये गाना इस संदेश के बाद।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा ये गाना आपने सुना और झुक गया आसमान। इस फिल्म के लिए ये गाना कंपोज किया था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ ओल्ड हिट्स प्रोग्राम में अभी बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब वक्त हो चला है युवाणी प्रोग्राम का।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काविन ऋतुराज और आप सुन रहे हैं युववाणी। आज की दुनिया में हम हर समय इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन शायद इसी कारण से हम पहले से ज़्यादा बेचैन भी हैं। फ़ोन खोलते ही लगता है कि हर कोई हमसे ज़्यादा खुश है। कोई घूम रहा है, कोई नई जगहों पर जा रहा है और कोई अपनी कामयाबी दिखा रहा है, और फिर अचानक ऐसा लगता है कि जैसे हम जिंदगी में पीछे छूट रहे हैं। इसी डर को कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम कहीं कुछ खो तो नहीं रहे। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जो हमें खुद को समझने और ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीने की सीख देते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस गीत से।

दोस्तों, कई बार हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से खुश होना कम कर देते हैं। हमें लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी हमसे बेहतर चल रही है, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ लोगों के अच्छे पल देखते हैं। उनकी परेशानियाँ, अकेलापन और संघर्ष हमें दिखाई नहीं देते, और यही तुलना धीरे धीरे हमारे मन का सुकून छीन लेती है। हम दूसरों की ज़िंदगी के सिर्फ अच्छे पल देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी को कम समझने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर रुकें, अपने मन की सुनें और हर समय दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करें। तो चलिए अब सुनते हैं अगला गीत जो हमें खुलकर जीना सिखाता है।

जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं, नई जगहें देखते हैं या बस कुछ समय अपने साथ बिताते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि असली जिंदगी फ़ोन में नहीं, हमारे आसपास चल रही होती है। हर पल को सोशल मीडिया पर दिखाना ज़रूरी नहीं होता, कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। आजकल लोग सनसेट देखने से ज़्यादा उसकी तस्वीर लेने में व्यस्त हो जाते हैं, पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस करने से ज़्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि तस्वीर अच्छी आई या नहीं। धीरे धीरे हम पल को जीना कम और उसे लोगों तक पहुंचाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर वही होती हैं जो कैमरे में नहीं, दिल में रह जाती हैं। किसी लंबे सफ़र में रास्ते की बातें, दोस्तों के साथ वो हंसा देने वाले पल, या किसी शांत जगह पर बिना कुछ कहे बैठ जाना। ये छोटे छोटे पल ही असली सुकून देते हैं। जब इंसान थोड़ी देर के लिए दुनिया की आवाज़ से दूर हो जाता है, तब उसे खुद की आवाज़ सुनना शुरू होती है और शायद वहीं से मन हल्का होना भी शुरू होता है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

आजकल हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी नाम चाहिए, जल्दी सब कुछ हासिल करना है, और इसी जल्दबाजी में हम अपनी ज़िंदगी को रफ्तार भूल जाते हैं। आजकल अगर किसी की उम्र कम है और वो सफल हो गया तो बाकी लोग खुद को पीछे समझने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी का कोई तय समय नहीं होता। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, कुछ लोगों की अपनी मंजिल जल्दी मिल जाती है और कुछ लोग रास्ता ढूंढने में थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल हैं। कई बार हम सिर्फ इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी तुलना किसी और से कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हर इंसान की परिस्थितियाँ, संघर्ष और रास्ते अलग होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते समय भी हर कोई एक जैसी गति नहीं रखता। आखिर में ज़रूरी ये नहीं कि कौन पहले पहुँचा, ज़रूरी ये है कि सफ़र अपने तरीके से तय किया या नहीं। जब इंसान अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़र से देखना छोड़ देता है, तब उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर उसी हर समय ये महसूस नहीं होता कि वो कुछ खो रहा है, क्योंकि उसे समझ आता है कि ज़िंदगी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बल्कि एक सफ़र है जिसे अपने हिसाब से जीना चाहिए। अब वक्त है अगले गीत का।

कई बार हम खुशी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। हमें लगता है कि खुशी बड़ी चीज़ों से मिलेगी, लेकिन सच तो ये है कि कभी कभी खुशी एक शांत सुबह में भी मिल जाती है, एक कप चाय में, किसी अपने से बैठने में, या बिना किसी जल्दबाजी के बिताए गए समय में। कई बार हम खुशी को भविष्य के लिए टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब अच्छी नौकरी मिलेगी, ज़्यादा पैसे होंगे, या ज़िंदगी पूरी तरह वैसी बन जाएगी जैसी हमने सोची है, तब सुकून मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा किसी न किसी कमी के साथ चलती रहती है, इसलिए छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही पल बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं।

दोस्तों, हर समय फ़ोन में व्यस्त रहना ज़रूरी नहीं है, हर चलन या ट्रेंड के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी खुद के साथ समय बिताना ज़रूरी होता है। और जब इंसान खुद के साथ सहज होता है तो उसे हर समय कुछ छूट जाने का

तो दोस्तों, आज हमने बात की उस डर की जो हमें हर समय ये महसूस करवाता है कि हम ज़िंदगी में कुछ खो रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी का असली आनंद हर जगह होने में नहीं, बल्कि जहां हैं वहां पूरे दिल से होने में। दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए। हर इंसान का सफ़र अलग है और हर सफ़र अपने आप में खास होता है। इसी सोच के साथ मैं काविन ऋतुराज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाणी प्रोग्राम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और इस फ्रीक्वेंसी पर दोस्तों इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट यूं ही

और शिमला के खुशगवार मौसम के भी आजकल काफी चर्चे हो रहे हैं जनाब। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आजकल ना हिल्स क्वीन शिमला का मूड क्या बताएं कैसा है। यहाँ पर भी इतनी गर्मी होने लगी है कि हमें लग रहा है कि हम शिमला में नहीं है, किसी मैदानी इलाके में आ गए हैं। खैर, शिमला में जो लोग रहते हैं ना वो हमारी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। पिछले 3-4 दिनों से शिमला में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, लेकिन मौसम विभाग ने ना हमें एक गुड न्यूज़ दी है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों में यानी 3 दिन के बाद जो है मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और हो सकता है कि शिमला में भी ठंडी रिमझिम फुहारें बरसें। तो ये जो मौसम में सडन चेंजेस होते रहते हैं ना, इसमें हमारा बीमार होना भी मतलब काफ़ी कॉमन हो जाता है कि लोगों को जो है वो कॉमन कोल्ड हो जाता है या गले में

राश या नॉर्मल जो ऐसे सिम्टम्स आते हैं छोटे छोटे, तो आपने क्या करना है ना ऐसे मौसम में, ये जो चेंजेस होते हैं अपना भी ध्यान रखना है, और टाइम टू टाइम मौसम अपडेट के लिए सुनते रहना है FM शिमला 103.7 MHz पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए इन गीतों के साथ।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

और इसी गाने के साथ आज का आपका और हमारा ये म्यूजिकल सफर भी यहीं खत्म होता है। अपनी रेडियो दोस्त स्वाति डोगरा को दीजिए इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। लेकिन आप सुनते रहें FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अभी प्रतीक्षा करें हमारी अगली उद्घोषणा की।

आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए सबसे पहले सुनते हैं चंबियाली कार्यक्रम।

जीत हाजर हैं चंबियाली कार्यक्रम लेकर के। अज सोमवार की दिहाड़ी है तो अज के प्रोग्राम जी असं ने गलबात करनी जी से है पर्यावरण सुरक्षा, मतलब कि अपना जिहड़ा असां दा वातावरण है तीस दा बचाव जिहड़ा असीं कियां करी जरूरी है। कि जो कि दिखा जी पक्षी पखेरू जिहड़े हैं से भी होंदे, से भी अपने घरे जो जिहड़ा है से बिल्कुल बनाई के रख दे, दूजे जीव जंतुओं का बचाई के रख दे, इहदे ठारी तां तिन घोंसला बनाया दा होंदा। तां तियां ही पर्यावरण जिहड़ा है से असां दा घोंसला है। अगर असीं पर्यावरण का बाहर निकलिए तो जीना जिहड़ा है से हो ही नहीं सकता। तो असं दी जिहड़ी पृथ्वी है से एक इदिया ग्रह है जिस जो असीं नीला ग्रह भी बोलते, इस पर जीने दी सारी जिहड़ी सहूलतें हैं से मौजूद हैं। ताज़ा ब्यार, ताज़ा पानी, जगह जमीन, बन बूटे, सारी चीज़ें जिहड़ी हैं से कुदरत ने धरती पर बख्श दी हैं। ते तां ही जिहड़ा है से इत्थे जीना संभव जिहड़ा है से होया दा है। कई हज़ारों करोड़ साल जिहड़े हैं से लगे जिंदगी जो पनपने वास्ते। तो क्या असीं ये सोचदे कि जियां जियां माणू ने तरक्की कीती तियां तियां क्या होया? तरक्की दी इस अंधाधुंध दौड़ दे विच असीं कुते ना कुते अपनी जिहड़ी जड़ें थी, अपना जिहड़ा वजूद था, तीचो असीं भूलना शुरू हो चुके दे हन। अज माणू दे दिमाग दे विच सिर्फ एक ही गल है, से अंधाधुंध जिहड़ा है से पैसे दे पिछे पागल है। भ्यागा उठदे शामी तक लगेदा पैसे कमाने, चाहे इसे खरे तरीके का आया करता है चाहे इसे माड़े तरीके का आया करता है। तो दिखा जी होर सारी चीज़ें जिहड़ी हैं से माणू ने एक तुसी बोल सकते कि तीस दे दिमाग दे विच बिल्कुल बंद ब्लॉक हो चुके दा है। क्या असी सोचते कि असी ये सारा कुछ की जो करे कर दें? अज तो माणू का दिमाग इतना विकसित हो चुके दा होना चाहिए कि ती जो खड़े ठीक है खड़ी चीज़ा माड़ी चीज़ा जिहड़ी भी हैं तिन्हां दा खरी चीज़ा माड़ी चीज़ा तिन्हां दा ज्ञान होना चाहिए। तो दिखा जी अगर असां दे दिमाग दे विच इतनी भी काबिलियत नहीं है कि असी जिहड़ा है से खरे खोटे दा ज्ञान रखी सकन, तो फिर असी तरक्की नहीं असी शायद कुसी होर पासे जाया कर देन। ते अज बड़ी भारी जरूरत है पर्यावरण जो बचाने दी, इस पर गलबात करनी। ते करना ही दिखा जी अब ता कि जो कि जनसंख्या भी बधिया कर दी है, सहूलियतें भी बधिया कर दी हैं, ते हर माणू ये चाहता कि तिसका जिहड़ी है से गड्डी मोटर हो। बड़े सारे माणू का अपनी गड्डी मोटर हैं, कई जिहड़े हैं से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिहड़ा है से यातायात जिहड़ा है बसें हो गई है ना जी होर गड्डियां हो गई तिन्हां दा इस्तेमाल कर दे। ते असी रोज़ सुनते खबरां दे विच सुनते खबरां दे विच अखबारां दे विच पढ़ते है ना जी, कुते ना कुते जिहड़ा है से एक्सीडेंट की खबर जरूर होंदी। ते बोलने का मतलब यह है कि सरकार ने बड़ी सारी इस पर भी कोशिशें तो कीती दी हैं कि इहदे कानून बनाए जान ताकि माणू जो थोड़ा डर हो। लेकिन देखा जी कानून बनाने की जरूरत क्या है? क्या असी जिंदगी जिहड़ी है सी इतनी कम मुल दी है कि असी घरे का बाहर निकल दे तो असी परवाह नहीं करते? फिर ये भी सोचना चाहिदा कि तुसां दी जिंदगी तो अनमोल है, तुसां दे कन्ने कन्ने तुसां दा टब्बर भी जुड़े दा है। तो सोची समझी के जिहड़ी है सी गड्डी मोटर चलानी चाहिए।

इस पर भी थोड़ी जी असर ने गल बात करनी, लेकिन प्रोग्राम की जी शुरुआत इससे कर दे जी, गुलशन पाल दे गाए इस बड़े ही बढ़िया चंब्याली लोकगीत कने।

मंडियाली कार्यक्रम सुनने वाले सबनिया जो पुष्पराचारी नमस्कार। ता देखा महाराज के भी कार्यक्रम आरा वक्त होया और कार्यक्रम मंज अज ऐसा तुसा सौगी गलबात लगाने के भी जीवना मंज सहनशीलता जो अपनाए कने सौगी सौगी देखा भी गलबात लगाने की ब्यागर जड़ा सैर सपटा हुआ से असा कठे कितना लाभदायक जो से हुआ कने सौगी सौगी देखा बढ़िया बढ़िया लोकगीत भी कार्यक्रम मंज सुनाने कि बिना लोकगीत रे भी कार्यक्रम आ देखा भी मज़ा नहीं आता। तो अं सोचा भी कार्यक्रम जी शुरुआत ही सब तो पहले एक बढ़िया जहा

जो से हुआ कने सौगी सौगी देखा बढ़िया बढ़िया लोकगीत भी कार्यक्रम में सुनाने कि बिना लोकगीत रे भी कार्यक्रम आ देखा भी मज़ा नहीं आता। तो हम सोचा भी कार्यक्रम जी शुरुआत ही सबसे पहले एक बढ़िया जहा लोकगीत अस जो से सुनी लिए।

देखे भी सहनशील मानव होना तिनारे कितना मान सम्मान और तारीफ जो से हर मानव जो से करा कने असर जड़े देखे भी बुजुर्ग थे स्यों भी बोलाए थे कि भी मानुआ जो हर काम आ एक जो से नीचा होना चाहिए ता ये नीचा देखा ये जड़ी सहनशीलता है ये देखा भी मानुआ कठे बहुत ही जरूरी जो से हाया ते भी देखा भी असे अपने जीवना में जो आगे जो से बदी सकाएं और आनंदा ते जड़ा अपना जीवन जो से जी सकाएं। ये भी देखा महाराज के भी असे अगर थोड़ी जी गल करिए कि भी जे समानू अंदर देखे भी सहनशीलता नहीं होनी से एकदम उताबले हुई जाने कने उताबले हुई जाने ता हर काम जो से तिनारा चौपट हुई जा। ये भी देखा महाराज की भी तू सके थी रस्ते अंदर चल रही था अगर देखे भी रस्ते भीतर कोई नाला या खड या दरिया हो ते अंदर बाढ़ आई रही था ते तरह ता देखे भी किनारे पर बैठी के जड़ा ते ता जो शांत होने रहा इंतजार करना पौना ता सही देखे भी सहनशील हाला ता जड़ा देखे भी जित अंदर सहनशीलता नहीं तो से तो देखे भी कूदी जाना तो फिर ही देखे भी तिनारी जो से क्षति जो से हुई जानी तो इं चाह रहे कि भी माणुआ जो सहनशील जो से हमेशा रहना चाहिए शांत बनी रहना चाहिए हर कोई भी गल हो अगर कोई तुसा कहने जोर आले गल करो या तुसा कहने कोई गुस्से आले गल करो तो तिना सौगी देखे भी शांत स्वभाव से प्यारा ते जो से गलबात करनी चाहिए एक शांति जो से सहनशीलता जो से ते तरह जवाब जो से देना चाहिए ताकि देखे भी तिना जो भी बढ़िया लगना होर तुसा जो भी बढ़िया लगना कहने गल देखे भी किसी भी प्रकार से आगे नहीं बधदी। तो अगर देखे भी सामने ते भी कोई गलत जवाब दो कहने दोनों पासे ते गलत जवाब दो ता से देखे भी एक लड़ाई रा माहौल जो से बनी जा जे तले देखे भी माणुआ जो कुछ भी फेरी हासिल जो से नहीं हुंदा और हमेशा देखे भी सो जो से अशांत बनी रहे जो से रहे हैं। ता आज के दौर अंदर तुसे देख देंगे कि भी आज देखे भी सहनशीलता बहुत ही जो से जरूरी ही और ये पाठ देखे भी बच्चा जो अपने घर ते माँ बापा जो या स्कूल पर मास्टर जो से छोटे बच्चे ते ही जो से ये पाठ सहनशीलता रहा जड़ा पाठ आई ये गुण जो से देना चाहिए कि एक देखा भी कोई बच्चे अगर जिद करो ता तेसरी कोई भी जो से जिद पूरी नहीं करनी चाहिए है ना से अगर देखा भी तुसे ते नारी जिद पूरी कर दे रहा तो से देखा कि हठी स्वभाव जो से हो ही जा ता जो देखा भी हठी स्वभाव हो गया तिना अंदर देखा भी से सहनशीलता फेरी कमी जो से आई जाए। तो अगर देखा भी तिना जो बचपना ते ही बच्चा जो से आदत पाई है कि भी इस जो भी तिना जो देखा भी चीज़ तिनारे मुताबिक ना दे के अपने मुताबिक तो तिना जो देखा भी अपने आप जो से एक आदत हुई जानी कि भी जब बड़े बड़े होंगे रहने कि भी जो हर चीज़ जो से सहनशीलता ते जो से हासिल करनी कितना बढ़िया लगा और इंतजार ते जो से हासिल करनी जो से बड़ी बढ़िया लगा है। तो ये देखा भी जड़ा सहनशीलता रा गुण हा बच्चा जो पहले ते जो से अपनाना चाहिए ताकि देखे भी बड़े हुई किसी हो कोई भी देखे भी अपना काम करो किसी भी रस्ते जाओ ता कोई भी देखे भी अपना नौकरी पेशा करो ता तेती देखे भी तिनारा जड़ा मान सम्मान हर चीज़ मतलब बिना तनाव रे बिना दुख रे और बिना देखे भी गुस्से रे चिड़चिड़ेपना ते जो से अपना काम करते रहो ता यही देखे भी सहनशीलता जो से मानुआ कठ बड़ी जरूरी होनी चाहिए और आज के दौर अंदर देखे भी तुसे सब नहीं जाने कि भी सहनशील होना मानुआ कठे बहुत जरूरी है और ये तो जो बच्चा जो कहने बड़िया जो कहने सब नहीं जो दसना हो रही था जो अपनाना जो से बहुत जरूरी जो से हया तमारा जे ता थोड़ी जी देखा गलबात हुई ये भी एक बढ़िया जा लोकगीत तुसा जो होर सुनाना लारा ता सुना तुसे लोकगीत।

शरीर जो से इतनी परिश्रम जो से नहीं करता। ता पहले तो हुआ था ना कि महाराज के भी लोग देखे भी हाथ हले सारे काम कराए थे, खूब जो भी काम करना थे अंदर देखे भी पसीना खूब बगा था, ता तिना जो देखे भी जरूरत नहीं होती थी कि भी ब्यागा उठी सो सैर सपाटा करो, तो असं तो देखे भी अपना काम काज अंदर लगी गए। जेता अंदर देखे भी कोई जोरारा काम होना, जेता अंदर काफ़ी जोर लगा के थी देखे भी भाग दौड़ारा काम होना, था आपको देखे भी तिनार जड़ा से खान पान जो से पाचन शक्ति जो से बढ़िया रह आई थी। पर ये भी देखे भी आज सारी सहूलियता जो से हुई गिरी माणुआ इकट्ठे माणू देखे भी हांडना फिरना कोई ज़्यादा चाहता नहीं आ, कित भी जाना होता तेता कटे देखे भी सब ने सुलिता हुआ कि भी कोई देखे भी घर द्वारा अपने गड्डिया रख रही है, बसा लग रही है ना, ऑटो वगैरह लग रही, जिथी भी जाना होता है माणू देखे भी हांडना तिनारा कम हो गया, कने स्यों देखे भी अपनी सुलिता कटे जो स्यों इतना जो से शरीर से पसीना नहीं बगता कि भी आ सारे जो जो आसे खाएं तो से दुख है जो सारा जो से पटचारे या ढंगाले जो से पची जाओ। तो या देखे भी जो माणू तो अजय भी देखे भी अपना कठिन परिश्रम कराएं, जो देखे भी अजय भी कोई अपना एड़ा कारोबार काम कराएं, जो खेतीबाड़ी कराएं या फिर कोई होर जेता अंदर तिना जो खूब देखे भी चलना फिरना भाग दौड़ जो से होंदी रहे होर शरीर अंदर देखे भी वक्त वक्त अंदर तिना जो प्यास लगती रहो भूख लगती रहो, कहने तिनारा जरा पाचन शक्ति जो से ठीक रहे हैं। जित पर जो देखे भी जिन्हें वाले देखे भी बैठा काम हुआ कोई अपना देखे भी बैठे कुर्सी पर बैठी के जिन्हें जो काम करना हो या फिर बैठी के जो से एक ही जगह बैठी के जो अपना कारोबार कर रहे हैं, तो तिनारा देखे भी तिना जो चलने फिरने रहा इतना वक्त नहीं मिलता, ता से देखे भी जे तिना अंदर जो से खान पान कहने सारी जड़ी पाचन शक्ति जो से कम जो से हुई जाए, तो खाना पचाना देखे भी तिना जो थोड़ा मुश्किल जो से हुई जाए। जे तले देखे भी माणू अंदर मोटापा आई जा होर पेटाली देखा सब नहीं जाने कि भी पेटाली जो से सारी बीमारियां जो माणुआ जो लगी जाएं, तो इतना कट्ठे देखे भी बहुत जरूरी है कि भी ब्यागा उठी के सैर सपाटा जो से घंटा आधा घंटा जो से सैर सपाटा करी लिया, कि देखे थोड़ी बहुत दौड़ भाग करी लीती, कने जे तले देखे भी ब्यागा जड़ी ताज़ा हवा जो से आसारे शरीर अंदर जाने, तो शरीर जो देखे भी एक नवी शक्ति नवी ऊर्जा जो से आसारे शरीर अंदर जे भी प्रवेश कराएं, तो तले देखे भी आसार जरा शरीर जो से एकदम चुस्त फुर्तीला जो से बनी रहना, कने सौगी देखा जड़ा ब्यागा उठी के सैर सपाटा करना, ते तले देखे भी मन भी जो से माणुआरा शांत बनी रहना, तो दिन भर देखे भी जो भी काम करना थकान भी नहीं रहती और काम अंदर भी देखे भी मन जो से लग रहा रहना, कहने किसी प्रकार का कोई तनाव भी नहीं जो से माणुआरे मन अंदर रहा, तो कहने सौगी सबसे बड़ी गल है कि बीमारियां तो जो से ऐसे जो से माणु बच रहे हैं, तो ये भी देखा भी वजन भी जो से सारा निरंतर अंदर रहना, तो कहने होर देखे भी जेड़ा आज तुसे देखते होंगे कि भी माणुआ वाले इतना वक्त नहीं होंगे कि भी एक दूजे वाले बैठो एक दूजे रे सुख शांत लो, तो अगर देखे भी रोज़ बहगा उठी के ऐसे घंटा आधा घंटा देखे भी घूमते जाओ, तो रोज़ देखे भी तिना सौगी जो से जो भी आ सारा समाज है आस पड़ोस सारे है, तो तिना देखे भी आप अंदर सुख शांत भी एक दूजे री हुई जाए, कने थोड़ा वक्त देखे भी आप अंदर गलबात कर दे भी जो से बीती जाए हंसी मखौल भी हुई जाए, कहने सौगी देखे भी जी ब्यागारी ताज़ा हवा जो से आ सारे शरीर अंदर प्रवेश कराएं, तो तले देखे भी एक नवी ताजगी नवी ऊर्जा जो से आ सारे शरीर अंदर जो से आई जाए, तो आज देखे भी ये बहुत जरूरी जो से हुई गिरा कि भी ब्यागा उठी के जो से सैर सपाटा जरूर जो से माणुआ जो करना चाहिए। तो महाराज ये थोड़ी जी गलबात हुई गई, ए बे जाते जाते तुसा जो एक बांका जहा लोक गीत होर सुनाने लारा, तो सुना तुसे लोक गीत।

महाराज रंजीत कुमार होरी आवाज़ा मंज ये सुने तुसें लोकगीत ए बे इस लोकगीत सौगी मंडियाड़ी कार्यक्रम रा वक्त भी पूरा होंदा लग्या ता आगे दें नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मंडियाली कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए अब सुनते हैं पंगुआली कार्यक्रम।

आकाशवाणी शिमला बिल्दी 5:20:32 भरे पेश है तू अपना मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सुबह जड़े ब्रह्मदत्त शर्मा तरफों बिल्दी नमस्ते। जी तो सुनने वाले अखबार फिर तुम्हें सुभ्याणी के स्वागत है। स्वागत का तर्ज द्रवी हैं कार्यक्रम सुनने वोरे भले इसे रेडियो पुट मोबाइल पुट चलती मोटर कार अंतर सुभ्याणी के अखबार स्वागत है। कार्यक्रम अंतरस बदे ने लोकगीत आते आज गणे जे कलाकार आई से नियामत हुसैन ओम प्रकाश तथा धन्य साथी और कृष्णा शर्मा इन्हें गीतारी की आवाज़ अंतरस बदे ने लोकगीतों से सुनाने

नहीं सुनानी आई, लेकिन कुछ प्रदेशी खबर भी सुनानी आई। साथ ही साथ हंसे जे हैं पंगवाल समुदाय जे अधिष्ठात्री माता भगवती है तटनी जे छड़ी यात्रा है से जे तसे शुरू हुई गिरी तत्पुटी में से गलबात करनी है, और साथ ही साथ जैविक खेती तत्पुटी में से गलबात करनी है। कार्यक्रम में जो शुरुआत हस्ती से आज गणे समाचार जे करनी है। प्रदेशांतर 51 शहरी निकाय जे मतदान थे से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, और 69% जे तस्किया ज़्यादा अधिक मतदाते हैं जे तथने वोट छड़ा। नगर परिषद तथा नगर पंचायती के जे मतगणना जे तसे जारी भूंगी थी ये एक नहीं गल थी, लेकिन नगर निगम में जे चुनावे परिणाम अस्ते से 31 मई अंतर जे घोषित होने अस्ते। विपक्षी नेता जे आई जयराम ठाकुर तने कांग्रेस सरकार पुठे 6.5 साले जे कार्यकाल अस्ता से बिल्कुल निराशाजनक जे तसे तने बतावा। राष्ट्रपति 25 मई अंतर प्रदान करने अस्ते तने द्वि वर्ष 2026 जे पद्म पुरस्कार अस्ते से वितरण करने अस्ते, और 131 विभूतियां जे तसे सम्मानित भूणी है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लौरा कि महंगाई रोकने अंतर विफल रहो रही प्रदेशे कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू आज तिरुवनंतपुरम केरले जे नए मुख्यमंत्री बनो रे वीडी सतीशन तने शपथ ग्रहण समारोह अंतर भाग नेरा, और इस मौके पुठ तने वीडी सतीशन तने बधाई तथा शुभकामनाएं दीती और आशा व्यक्त की कि तने नेतृत्व अंतर केरलम जैसा तसे विकास और सामाजिक न्याय तथा सुशासन जय त नई ऊंचाई जय त हासिल करता अजय तने तने क्या उम्मीद की। निछुटी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवारे जे अस्तित्व से 31 मई तने आकाशवाणी पुठे मन की बात कार्यक्रम और कार्यक्रम पुठे आपू विचार जय तसे साझा करने एज ए मासिक रेडियो कार्यक्रम अस्ता ऐसे जे कड़ी अस्ती से 134वीं कड़ी आई। श्रोता जे अस्ते तसे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पुठे जाए त कार्यक्रम में दी और कार्यक्रम दी अपू विचार जाए त और सुझाव से मैसेज लंघाई सकते। एज ए सुझाव अस्ते नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम में माध्यम जे भी जाए तसे वहीं सकते। और अजय तुम जे हस्ते ता 1922 पुठ भी मिस्ड कॉल जे तुम दे सकते, और SMS जे तुम प्राप्त लिंक सीधे जे PMA सुझाव जे तुम तन दे लगा सकते। सुझाव जे हस्ते तसे 29 मई तक स्वीकार जे तसे भूणे दिना बाद एज ए सुझाव ऐसे स्वीकार नहीं भूणे, यानी लिंक जे 29 मई तक खुला आस्ता। तो कोई भी श्रोता जे हस्ते तसे आपको सुझाव या फिर जे फोन आस्ता फोन नंबर में तुम्हें जाना बताओ कि तत्पर टोल फ्री नंबर पर तुम फोन जे तसे कार्यक्रम जे तब विचार जे तसे साझा कर सकते और सुझाव जे तेने भी दे सकते थे। तो अथियाँ कुछ प्रदेश और देश समाचार। नियामत हुसैन आवाज़ इंतर्वेदन लोक भजन है तो सुने लोक भजन फिर लें तुम्हें हो रही गलबात।

शिव कैलासों के राजा, धौलीधारों के वासी, शंकर संकटहरना, बदिन लोक भजन हैं। सुनने वाले सुनो, जरूर आनंद निरभ होना। सुनने वाले में तो जो गल आनलो थी कि श्री देवी मिंदल माता पंगे जे ता अधिष्ठात्री माँ भगवती देवी अस्ती और पूरा पंगवाल समुदाय तो की, लेकिन पूरे मतलब अन्य जे मतलब राज्य अस्ते तठान भी एड़ी जे था माथा नमाजन दिन थे माँ भगवती के। तो जे हैं चम्बे जिले जे पैंगे घाटी अस्ती श्री माता देवी मिंदलवासिनी तठनी जे तसे छड़ी यात्रा जे तसे आजकल शुरू हो रही। मंदिर अंतर जे तसे आयोजन होने वाले जे वार्षिक छड़ी यात्रा आस्था संस्कृति और दुर्गम हिमालय ट्रैकिंग एक अद्भुत संगम अस्ता और एज ए पावन यात्रा अस्ति अतंत्र भाग नैन दी हर साल हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर पंजाब दिल्ली सहित पूरे देशी अंतर हजारों श्रद्धालु जेता पांगी घाटी पूजते और तस माँ भगवतिया के तसे चरण स्पर्श करते और तसे शीश नवाजी करे के आशीर्वाद नैनते और

मैं जे त दुरा दुरा आपू मनोकामना जे तसे पूर्ण करे के तैड़ी ते और तस माताई आशीष न दे और तसे धन्यवाद कते। तो ऐजे अधिष्ठात्री माता भगवती अस्ती कलयुगे काली नौ जे भी जानी थी चंडी नौ जे जानी थी। तो वार्षिक जे अवधि अस्ती हर साल मई लास्ट और जूने भारत कर जाए यात्रा चलती, लेकिन अतः आधिकारिक तौर पुठे तारीख जे तसे निश्चित होती जे प्रशासन आसता और तठनी जे लोक परंपराई आधार पुठे जे प्रजा सिस्टम आसता प्रजा मंडल आसता और से जे अस चीज जे तसे मतलब निर्धारित करते कि भाई कस तारीख के जे तसे यात्रा शुरू करनी है। पच्चे मैया के बाद जे से आधिकारिक तौर पुठे यात्रा जे तसे शुरू हुई घेती छोटी छड़ी यात्रा चीन जून जे तसे निस्ती कोई न कोई जे मतलब पाडर मचेल जे माता अस्ती तठनी से तस माताई पूजा जे अस्ती ता मंदलवाड़ी माताई पूजा तड़ी भी आई ता और मचेल माता बहन मतलब आपस अंतर जे ता भाई बहनी के रिश्ता अस्ता। तो छोटी छड़ी यात्रा जे अस्ती तसे चीन जून जे तसे निस्ती और बड़ी छड़ी यात्रा से बारह जून निस्ती। बड़ी छड़ी यात्रा जे अस्ती तठा माताई त्रिशूल जे तसे माँ भगवती मिंदलवासिनी था नहीं था और यात्रा जे त आरंभ होती जे स्थानीय छड़ी यात्राएं जे अस्ती से तस्के अलावा जम्मू संभाग भद्रवाह और उधमपुर और रियासी जे तसे माताई पवित्र छड़ी यात्रा जे तसे पहल के पुठे आते और पूरे पारंपरिक उल्लास जे तपेंगे जिसे रवाना बोलते हैं। देखो अपनी अपनी श्रद्धा अपना अपना विश्वास आस्ता और माँ भगवती जगत जननी माता जी अस्ती तसे कणकण अंतर मौजूद है कणकण अंतर तसे वास आस्ता। और ख़ास करके अगर भौगोलिक स्थिति अगर गल के जे तहसील हेडक्वार्टर किलाड़ आई तठा जे तस माताई मंदिर जे त 20-25 किलोमीटर जे दूर जे त चिनाब नदी किनारे जिसना चंद्रभागा बुते लेकिन से संसारी नाला जैसे ही क्रॉस बनती से चिनाब बनी गई थी। तो चंद्रभागा जो संग किनारा आस्ता मिंदल ग्रां जे तसे वसोरा और भटवास ग्रां अंतर जे माँ भगवती जे तसे विराजमान आई तसे तड़ स्थान आस्ता पवित्र स्थान आस्ता और कलयुगे देवी जे त रूप जे पूजी थी। लकड़ी और पत्थर उत्कृष्ट जे तो प्राचीन शैली जे अस्तित्व तड़ भव्य और दिव्य मंदिर जे आस्ता तड़ी बनोरा आस्ता और इस जगह ही अख अनोखी परंपरा आई पूरे हिमाचल की पूरी दुनिया अंतर लेकिन तड़ी अलग अख अनोखी परंपरा आए कि अके बधेले बाणु आई तड़ी मतलब अख हल बैल जैसा था अके हल अख बैल जे तड़ी हल जोतता। तो एनी जे परंपरा अस्ती अनोखी परंपरा अ तड़ी हिंदी हती थी लेकिन पूजन कनु के आई बड़ा कठिन और दुर्गम रास्ता आस्ता। लेकिन इधर अगर बाय रोहतांग मनाली होते हुए रोहतांग अटल टनल भूते जे और सिसु तांदी भूते जालमा होते हुए उदयपुर होते हुए उदयपुर के अगर जे था मतलब 45-50 किलोमीटर सफ़र जैसा था इस माताई स्थान तक रास्ता। और उधर अगर जमधेरी अस गल तो डोडा पाडर किश्तवाड़ वगैरह भूते हुए और ये जो गुलाबगढ़ एरिया था संसारी नाला क्रॉस करके जम्मू बॉर्डर ख़त्म होता और हिमाचल बॉर्डर जो तसे शुरू होता तो तठा किलाड़ के यहाँ कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर के दूर सफ़र आस्ता किलाड़ के यहाँ। तो प्रशासनिक जे तैयारियाँ अस्ती से जे तठनी प्रशासन आस्ता से खूब तैयारी करता कि कैसे सावे गाड़ी के आवाजाही चलनी अस्ती और कोड़ी तने चेक पोस्ट आस्ता और कोड़ी तने से कागजात जे हस्ते दस्तावेज जे तसे पूरे चेक करने आए चेक करके गाड़ी जे तसे अगर लंघाने अस्ती और जे मतलब दान पुण्य कमाने वाले जे मैन वस्ते तने खूब सारे लंगर लगोरे भूनते भंडारा लगोरे भूनता और साथ ही साथ चाय पानी जे व्यवस्था अस्ती से यानी कि चेरी जे पुल अस्ता तठा खब्बल जगह अस्ती तठा शुरू हुई गई थी और खड़ी मंदिर तक रहे मंदिर भी तैड़ी मतलब अलग अलग स्थान के यही करके अलग अलग राज्य के यही करके लोग जाए तो मैन जाए तो तड़ी लंगर भंडारे आयोजन करते हैं। तो कोई भी मैन जाए तो तठा प्रसाद निये बगैर नीता और माताई चरण अरदास करके आप जो मनोकामना जाए तसे पूर्ण करके ईता। तो अगर

कसरे भी ध्रुवाचार्य शून्य बाड़े आस्ते कसरे मन भुए तो हिमाचल प्रदेश जनजातीय जो इलाका आसता जिला चंबा पांगी घाटी जे इता श्री देवी माता मिंदलवासनी जे स्थान आसता तड़ी हर साल आई यात्रा छड़ी यात्रा जे इत से भूनती। संस्कृति अलग है नहीं अति तो है, हालांकि दुर्गम हिमालयी ट्रैक ट्रैक वाला रास्ता आसता अख अद्भुत संगम आसता जरूर तुम घाई सकते और इस पावन यात्रा अंदर भाग नैन दी हर साल दूरों दूरों यात्री इनते, लेकिन अगर कसरे इच्छा आए श्रद्धा आए तो इस माँ भगवती दर्शन कर दीजिए। तसे ये समय आसता खास करके मौसम हिसाब भी बहुत बढ़िया समय आसता, तो माता से भीपुट कृपा बरसाए। और मौके गल थी मैं तुझे जिले ओम प्रकाश तथा तने साथी की आवाज़ बजे लोकगीत है सुने लोकगीत फिर लें तुझे होरी गलबात।

ओम प्रकाश तत्थन तने सैथी क्या वाज इंद्र बेदन लोक गीत हैं सुनने वाले सुन जरूर चाव नहीं रहा हूँ ना सुनने वाले में तुझे गल आने लगती कि जैविक खेती। देखो जी जैविक खेती एक इन्हीं खेती है कि जतंत्र की जे टिकाऊ और प्राकृतिक कृषि पद्धति पुठे आधारित है। जतंत्र की जे खास करके जे रासायनिक उर्वरक है और कीटनाशक हस्ते या खरपतवार नाशक हस्ते तसे उपयोग पूरी तरह जे तसे वर्जित होता। अज ये खेती अस्थी पूरी तरह प्राकृतिक संसाधन पुठे टकोरिए और जैविक जे घटक हस्ते तत्पुठे आधारित है। ऐसे मुख्य उद्देश्य यही है कि जे हैं मिट्टी आई से उपजाऊ बने उपजाऊ शक्तिशाली बने और साथ ही साथ पर्यावरण जे तसे शुद्ध रखे और जे मैन वस्ते से रासायनिक जे रासायनिक खाद्य पदार्थ हस्ते रसायन जे हस्ते तस्किया मुक्त भे और पौष्टिक भोजन जे देने प्रदान भे। खास करके जे हैं जनजातीय इलाके हस्ते खादी इस्तेमाल तड़ी ना के बराबर आई। अब घर अंतर माल मवेशी भी थेरे खास करके गसके गाय चूरी आई लच्छ आई गेरु आई तो तसे जे आई ताख मुठ मल भी आई तसे बाढ़ आई तो तस हिसाब जे आई ता जे हैं जे जिमी अस्ती से बिल्कुल ठीक तरीके जे तसे जे जन अस्ता मिट्टी जे आई तसे उपजाऊ आई। और जैविक खाद जे अस्ती जसनो बोली सकते कि खास करके गोबर बाड़ी आई और केंचुआ खाद है ना जी हरी खाद और तस से जे खाद अस्ती तसास मतलब अब जिम्या अंतर भिम्या अंतर छड़ी करके बिल्कुल तसे जे कीटनाशक हस्ते तसे से इस्तेमाल ना के बराबर करते। और खास करके अगर फसलियाँ चक्कर जे बताऊँ तो जैसे अगर इस बार से कुकड़ बोरी या गेहूँ बोरा तो फिर अंतर फसलें अंतर बदलाव करते आलू आए मटर आए राजमा आए या गेहूँ आई जौ आई कुकड़ी आई तो ऐसे हिसाब से इतना अलग अलग फसली के जो बुआई जाए तसे कहते मतलब फसली जे चक्कर आई से बदली करके अगर अस फसलें उगाल तो धनिया से जे तसे फ़ायदा भी रहता और भूमिया अंतर थोड़ा ना मतलब बदलाव भी रहता। जे प्राकृतिक जे कीट हस्ते तने नियंत्रण कर दी जे हानिकारक जे कीड़े मान दी खास करके जे गौमूत्र आई और तसंतर मल छड़ी करके गौमूत्र छड़ी के अगर तस बिल्कुल तस्या घोल जना बनाई करके तैयार करेल तो तैसे अगर अस छिड़काव करेल तो कुछ हद तक रजिए मतलब जे कीटनाशक हस्ते तो उसे ख़त्म हो सकते। अगर खास करके अस पौधे के अस गल लाते जैसे सेब से पौधे हस्ते बूटे तो कई बार की बूंदे की लंगूर है या बंदर है तसे जे छाल हस्ती तस खाई छटे और से बूटा दड़ी जाए तसे सूख सकता तस जे जड़ हस्ती जे तना हस्ता तो तसे जे गौमूत्र आई या फिर मल हस्ता तसे घोल बनाई करके प्रॉपर तरीके जे तसे अगर छिड़काव करल तो दोबारा जे तसे बंदर और लंगूर जे हस्ते तो जैसे छाल जे तसे नखींदे। खास करके जे हैं बग बगवी हस्ते और जिमी भूमि हस्ते तसे आसपास प्राकृतिक मित्र जे कीट हस्ते और पक्षी हस्ते तने जे खास करके बढ़ावा देते जे फसल हस्ते तसे मतलब रक्षा कवचे तौर पर जे तसे कम करता। और बग अंतर अगर से जे कोई मतलब कीटनाशक के छिड़काव क्या तसे असदी मतलब लाभकारी नहीं बल्कि हानिकारक हस्ते। इंसान जे तो थोड़े फायदे चक्कर अंतर यानी कि नकदी फसलें भी आवे जे तसे बुआई भून लगो रे उगाण लगो रे खास करके मटर आई आलू आई सब्जियां आई और अन्य चीज़ियाँ दस मतलब डबल बेनिफिट कमाउन दस जे तो अन्य चीज़ के इस्तेमाल करते जे कि हैं स्वास्थ्य पुठे गहरा प्रभाव जे तसे पड़ लगो रहा। अगर अस प्राकृतिक खेती जैविक खेती अगर अस गोबर खाद छड़ी करके या केंचुआ खाद या हरी खाद छड़ी करके तसे इस्तेमाल करेल और खास करके आप जो जिमी अस्ती भूमि अस्ती तसे अस सही तरीके से इस्तेमाल करेल बीमारियों के भी अस बचने अस्ते और साथ ही साथ सेहत भी आई जे तसे ठीक रहनी अस्ती और मिट्टी सेहत तसंदर भी सुधार रहना अस्ता। स्वास्थ्य की वरदान तो आई आई लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी अस्ता और तसे लागत अंतर भी कमी इंदी जे किसान अस्ते से अधिक मुनाफा जे तसे कमाई सकते लेकिन अत्यधिक जे मतलब अगर अस लालची

लोभी या फिर ज़्यादा पैसे कमाने भूख अगर अस केम बद गए तो अस जे तेने तरीकें जे अपनाते जतन तर के अस थोड़ा टाइम तो अस तस चीज़ी फ़ायदा नहीं सकते, लेकिन लंबे समय तक अस तस चीज़ी फ़ायदा ना दे सकता, क्यों करके जे सेहती पुट भी ऐसे असर जे तसे पड़ता। आज के समय अंतर बढ़ते प्रदूषण और बीमारी जैसे हिसाब बढ़ने लग रही, तो जैविक खेती न केवल अख धरती पुट सेहत दी बल्कि मानव जीवन तरह दीर्घायु दी बेहद जरूरी अस्ती, लंबी आयु दी बड़ा जरूरी अस्ती कि हैं खान पान जी अगर हैं सही भोल तो जिंदगी जी अस्ती सेहत जी अस्ती से ठीक रहने अस्ती। अगर खान पान अंदर गड़बड़ भोल तो से जा जा पैसा जी अस्ता तो से दवाइयाँ पुट लगना है, बाकी तो और कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए जैविक खेती तसे इस्तेमाल करे आप उस सेहती जे तक ख्याल रखे। नछोटी गीत कृष्णा शर्मा आवाज तो सुने श्लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे पंगवाली कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं नरेश चौहान की आवाज़ में ये सिरमौरी लोकगीत।

0: इंदिरा देवी की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कुल 47 नगर निकायों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है और समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि भाजपा ने 47 में से 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 12 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ चुका है।
1: 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते। पार्टी के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश इस बात को लेकर के, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मालूम पड़ जाता है किस पार्टी से संबंध रखता है। पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है। प्रभाव का इस्तेमाल करने की अगर वो कोशिश करेंगे उसमें भी वो एक्सपोज होंगे।
0: शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो

0: गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
1: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय व सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शिक्षा और इतिहास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कांगड़ा की SDM शिल्पी बेगटा ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देश भर से आए कई जाने माने कलाकारों ने लगभग 50 कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को हर कलाकार की रचनात्मकता व कला देखने को मिल रही है।
2: मेरा नाम मनप्रीत है, मैं लुधियाना से आई हूँ। टोटल आई थिंक मोर देन 45 पेंटिंग्स हैं सबकी मिला के, और सबका अलग अलग काम है, अलग अलग, कहते ना हर किसी का अपना अलग हाथ होता है, अपना अलग अलग क्रिएटिविटी, अलग अलग काम है, और सबने बहुत मन से काम किया, बहुत एफर्ट दिए हैं अपना यहाँ पे लाके लगाने के लिए।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से मुलाकात की। इस दौरान नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पारंपरिक चिकित्सा, AI आधारित जन स्वास्थ्य नवाचारों और TB उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयासों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: Hey girls,
4: hi, congratulations.
3: आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी।
4: Yeah.
3: चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्र और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अब आप सुनेंगे महासुई कार्यक्रम।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के मीरा वर्मा रा नमस्कार। उम्मीद करूँ मारे श्रोता ठीक ठाक होले और देखो जी मारे हिमाचली कार्यक्रम वाला आनंद लेने लगी रहे होले। आज कार्यक्रम दी मेरे तुसो सही बातचीत करनी सी बातचीत होनी बणों के आगे दो बचाओ। तेथे अलावा आज असो देखो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस इतने बारे की भी बातचीत करनी और खबरसार और लोकगीत होने ही होने। तो सभी तो पहले बातचीत कर लें मैं बणों के आगे दो बचाना चाहिए। पेड़ पौधे देखो प्रकृति री हम इंसानों के

लेख राम पालोरी आवाज़ दोदा तुसे ये लोग गीत चुना एवे बात कर लेने मारे विश्व एड्स टीकाकरण दिवस और बारे दे। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस जनी के HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस भी बोला जाओ हर साल 18 मई के मनाया जाओ। इस दिहाड़ेरा मुख्य उद्देश्य HIV री रोकथाम और तेई एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने री तेई अनुसंधान और महत्व के उजागर करना असो। HIV टीकाकरण और समर्थक इस दिहाड़े HIV संक्रमण और एड्स और रोकथाम और तेई टीके री लगातार और बहुत जरूरी जरूरतों पाए जोड़ दियो से हजारों स्वयं सेवकों समुदाय और सदस्यों स्वास्थ्य पेशेवरों

समर्थकों और वैज्ञानिकों के धन्यवाद दियो जो एक सुरक्षित और प्रभावी एड्स टीका खोजने रहते ही मिली रो काम करने लगे रहे। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दो आग्रह करो जे HIV एड्स महामारी रे व्यापक समाधान रहते ही एक महत्वपूर्ण तत्वों रे रूपों दे नई तकनीकों दे निवेश और महत्व के पहचानो। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अवधारणा 18 मई 1997 के मार्गन स्टेट यूनिवर्सिटी दे तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए दीक्षांत भाषणों दे निहित सो। क्लिंट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी रे उभरते युगों दे दुनिया के नए लक्ष्य निर्धारित करने और अगले दशकों के भीतर एड्स और टीका विकसित करने दे री चुनौती देते हुए बोला जे केवल एक वास्तव दे प्रभावी निवारक HIV टीका ही एड्स और खतरे के सीमित करी सको और बाद इत के खत्म भी करी सको। पहला विश्व एड्स दिवस 18 मई 1998 के क्लिंटन रे भाषणों रे वर्षगांठों रे उपलक्ष्य दे मनाया गया था और ये परंपरा आज भी जारी है। सो हर साल विश्व भर रे समुदाय विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पाए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करो ताकि एड्स टीकों रे बारे दे जागरूकता बढ़ाई जा सको। समुदायों के HIV री रोकथाम और एड्स और टीके री तई अनुसंधानों रे बारे दे शिक्षित किया जा सको और इस बातों पाए ध्यान दिलाया जा सको जे आम लोग इस महामारी के रोकने री तई अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों दे किशा योगदान दे सको। एड्स HIV संक्रमणों री सभी दो उन्नत अवस्था सो HIV और एड्स नाम भ्रामक हो सको क्योंकि दोनों शब्द एक ही बीमारी रा वर्णन करो। हालांकि HIV साई संक्रमित ज़्यादातर लोगों के एड्स नहीं होंदा, एड्स दिवस रा उद्देश्य HIV महामारी रे बारे दे जनता के जागरूकता बढ़ाना और इथे के रोकने री तई टीके री तत्काल जरूरतों पाए बल देना सो। ये टीके रे अनुसंधानों दे हुई नई प्रगति और मौजूदा चुनौतियों पाए ध्यान आकर्षित करो जनी सहे जनता दे जागरूकता और भागीदारी के बढ़ावा मिलो। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस तीनों शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों चिकित्सा पेशेवरों स्वयंसेवकों और अधिवक्ताओं की प्रतिबद्धता का सम्मान और स्मरण करो जो एक सुरक्षित और प्रभावी HIV टीका बनाने की बहुत कोशिश करने लगे हुए। विश्व रे सभी दो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों बीच दो एक ही रा समाधान करने की नवाचार और मजबूती जरूरी है। सो प्रगति रे बावजूद वैक्सीन रे विकासों के बढ़ावा देने रीते ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से ही लगातार और ज़्यादा धन और जरूरत सो। विश्व भर रे लोग इस दहाड़े के मनाई रहो HIV एड्स महामारी के खत्म करने रे प्रति अपनी प्रतिबद्धता के दोहराओ। ये लाखों प्रभावित लोगों के आशा प्रदान करो और इस बातों के याद दिलाओ जो लगातार बाधाओं के बावजूद वैज्ञानिक तरक्की और साझी कोशिशों से ही एड्स मुक्त भविष्य संभव हो सको। 26वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन एड्स 2026 पुनर्विचार करो और पुनर्निर्माण करो और आगू बढ़ो विषय रे अंतर्गत आओ अंतर्गत आयोजित किया जाने लगे रहा। तो जी ये तो थी कुछ बातचीत विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के बारे दी और ये भी सुनो तुसे लोग।

26 पद्म पुरस्कार प्रदान कर ली। गृह मंत्रालय सोशल मीडिया पोस्टों दे बताया जे राष्ट्रपति भवनों दे आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह दे राष्ट्रपति भवनों दे आयोजित होने वाले समारोह दे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्रदान कर ली। इस साल भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की असो। इनदे 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल असो। पुरस्कार पाने वालों दे 19 महिलाएं असो, जबकि 16 लोगों के मरणोपरांत सम्मान दिया जाना। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान व इंजीनियरिंग, जन सेवा साथी, व्यापार और उद्योग जे विभिन्न क्षेत्रों दे उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदानों के दिए जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 मई के आकाशवाणी दो मनोरी बात कार्यक्रमों दे अपने विचार साझा कर ले। ए इस मासिक रेडियो कार्यक्रमों री तई के अपने विचार और सुझाव भेजी सको। ए सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई गाव ओपन फॉर्मों रे माध्यम साई भी दिए जा सको। तुसे 1922 पाए मिस्ड कॉल दे रहो और SMS साई प्राप्त लिंक साई भी सीधे प्रधानमंत्री के सुझाव भेजी सको। ए सुझाव जो 100 से 29 मई तई के स्वीकार किए जाने। तो जी ये तो थी खबर सार। अरे बे सुनो तुसे लोकगीत।

लूरी ढाके लगी नई मशीना, बोलो बाबू रोशना नई मशीना रे। तो अजी बहुत बढ़िया लोकगीत था और गाने लगे रहे थे नितिन तोमर। इस लोकगीतों से ही मारे कार्यक्रम रहा भक्त गाओ ही मुलाकात होली आने वाले कल मंगलवारों के, और मंगलवारों के मारा मासवी कार्यक्रम जो सौ 24 बजे 50 मिनटों पाए प्रसारित हो। तो इन्हीं सभी बातों से दियो इजाज़त सभी सुनने वाले के। राम राम।

कुल भी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता वे देवेंद्र ठाकुर तर्पण नमस्कार। देखा जी आज के कार्यक्रम गलबात लानिया सा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस रे बारे में और गलबात लानिया सा पर्यावरण प्रदूषण रे बारे में संगे संगे शोभले जी लोकगीत भी सुनाने तो सब है। ता सभी ने पहले सुनाना तो सब एक शोभला जी लोकगीत गाने वाले कलाकार सी मीना टंडन।

देखा जी, ए तो शुरू से शोभला जी लोकगीत। अबे गल बात लानी है सा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस रे बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 28 मई वे पूरे विश्व में मनाया जा सा। यही दिवस रा मुख्य उद्देश्य लोक का वे संग्रहालय रे महत्व, संस्कृति, विरासता रा संरक्षण व इतिहास, कला और परंपरा रे प्रति जागरूक केना सा। संग्रहालय कोई भी देशेरी सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर और संरक्षण हुआ सा ता केवल पुरानी चीज़ा वे सुरक्षित जाने री जगह नहीं आती, बल्कि शिक्षा, अनुसंधान और समाज वे अपनी जड़ा संगे जोड़ने रा महत्वपूर्ण माध्यम भी सा। यही महत्व रे समझाने री तई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा सा। यही दिवस री शुरुआत वर्ष 1917 न इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आइकॉन द्वारा केरी थी। आइकन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था सा जो विश्व भर रे संग्रहालय रे विकास और संरक्षण रीत कौम केरा सा। संग्रहालय कोई भी देश री पहचान और इतिहास रा दर्पण हुआ सा। उन पुरानी मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ पांडुलिपियां, चित्रकला, वैज्ञानिक उपकरण, युद्ध सामग्री, लोक कला और संस्कृति वस्तुएं सुरक्षित डाई दी हुआ सा। जब कोई मानू संग्रहालय न जा सा तो सौ केवल चीज़ा नहीं हेरा सा, बल्कि सौ इतिहास री यात्रा भी केरा सा। तेई वे ऐ जानने रा मौका मिला सा कि तेरे बुजुर्ग कैंडे रोआ थी, तिनारी संस्कृति कैंडी थी और समाजन वक्त वक्त पंदे कैंडे विकास हुआ। भारत जंडे विविधता संगे बरुद देश सा ना संग्रहालय रा विशेष महत्व सा। भारत री सभ्यता हजारों साल पुरानी सा। औखे कई संस्कृतियां, धर्म व राजवंश रा इतिहास जुड़ सा। उन्हीं खातिर भारत न राष्ट्रीय संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय, कला संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय और लोक संस्कृति जैसे कई प्रकार रे संग्रहालय स्थापित किए रहे। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत रे प्रमुख संग्रहालय ने एक सा जोखे प्राचीन भारतीय सभ्यता री अनेक दुर्लभ चीज़ा सुरक्षित सा। संग्रहालय शिक्षा री भी एक महत्वपूर्ण केंद्र सा। विद्यार्थी वे संग्रहालय ज्ञान प्राप्त करने रा एक व्यवहारिक माध्यम सा। किताबन पढ़ूदा इतिहास, विज्ञान और कला वे संग्रहालय न प्रत्यक्ष रूपन हेरी सकासी। वहीं संगे विद्यार्थी री रुचि और रुचि बड़ा सा। आजकल संग्रहालय न डिजिटल तकनीक, वीडियो प्रस्तुति री व्यवस्था भी सा जुनी लाइए लोग का ज़्यादा आकर्षित हुआ सा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस रे अवसर पंदे विश्व भर ने कई कार्यक्रम आयोजित हुआ सा। संग्रहालय ने विशेष प्रदर्शनी लगाई जा सा। सेमिनार और कार्यशाला आयोजित हुआ सा और विद्यार्थी ने प्रतियोगिता कराई जा सा। कई जगह न संग्रहालय निःशुल्क प्रवेश सुविधा हुआ सा ताकि तोखे जाइए लोग का इतिहास व संस्कृति वे जानी सकसी। आज के आधुनिक और तकनीकी रे युग न संग्रहालय रे सामने कई चुनौतियां भी सा। पुरानी वस्तुओं रा संरक्षण करना आसान कौम नहीं आती। प्रदूषण, प्रकृति आपदा और मानवीय लापरवाही संगे ऐतिहासिक धरोहर वे नुकसान पहुँच सा। वहीं तक संग्रहालय न सुरक्षित वातावरण, आधुनिक संरक्षण तकनीक, विशेषज्ञ री जरूरत हुआ सा। उन्हीं के अलावा जुआना वे संग्रहालय री ओर आकर्षित करना भी एक बड़ी चुनौती सा। आजकल के वक्ता न लोग का मोबाइल और इंटरनेट रा ज़्यादा व्यस्त रहा सा। जुनी संग्रहालय ने तिनारी रुचि कम होंदी लागी सा। ऐसा समस्या वे दूर करने री तई डिजिटल संग्रहालय, वर्चुअल मोड और नवी तकनीक का उपयोग होंदा लागा सा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस

रख लेता, आज से भी सुरक्षित रह ले। तो देखा जी ऐ थी किस गलबात, ऐ वेलाणी आसा किस खास खास खबरा। राज्यपाल कविंदर गुप्ता होरे समाज रे सभी लोगों पर्यावरण संतुलन, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य, जागरूकता री कमी होर नशे जनी सामाजिक बुराई दूर करने सक्रिय योगदान देने आह्वान करू। तिने जम्मू ने एक कार्यक्रम न पंजाब, हिमाचल होर दिल्ली न आए दे प्रतिनिधि वे संबोधित कर दी केरे बोलू कि केवल सरकारी प्रयास संगे इन्ह समस्या का समाधान संभव नहीं आती, बल्कि होर उन समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी सा। राज्यपाल होरे ढूंढू कि प्रभावी नेतृत्व कोई पदापन दे आसीन होना नहीं आती, बल्कि लोका वे संगे लेइए चलना समाज की आवश्यकता भी समझाना और सकारात्मक परिवर्तन रा माध्यम बना सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई वे वर्ष 2026 वे पद्म पुरस्कार प्रदान करना। गृह मंत्रालय होरे सोशल मीडिया ने दसू कि राष्ट्रपति भवन न आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह न राष्ट्रपति पद्म विभूषण होर पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। ऐसा सालन भारत सरकार होरे कुल 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की। उन पौंस पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल सा। पुरस्कार पाण वाली 19 महिला सा, जबकि 16 लोग वे मरण उपरांत देना लाऊ सा। यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान व इंजीनियरिंग, जन सेवा सहित व्यापार होर उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट होर विशिष्ट योगदान रिते मिला सा। तो देखा जी ऐ थी किस खास खास खबर। एवं जाते जाते सुना तू सब एक होर लोकगीत गाने वाले कलाकार सी दुनी चंद। तो लिया जी सुना है शुभ लजें लोकगीत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान, बागवान, बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान श्रोताओं, कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं योगिता शर्मा
1: और मैं हूं जय।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम कृषि जगत में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने कृषि और बागवानी के कार्यों में व्यस्त भी जरूर होंगे।
1: जी योगिता जी, और सुनाइए, इन दिनों क्या कुछ खेत खलियानों में चल रहा है, बागवानी में क्या कुछ चल रहा है?
0: तो देखिए जय, आजकल हमारे खेतों में लहसुन जो है वो पककर तैयार हो चुका है। इसके साथ है जो धनिया की फसल है वो भी पककर तैयार हो चुकी है। तो आजकल हमारे खेतों में लहसुन की फसल ली जा रही है और साथ ही है जो धनिया है उसका भी सुरक्षित भंडारण किया जा रहा है। और अगर बेल वाली सब्जियों की बात करें तो बेल वाली सब्जियों में इन दिनों कद्दू, खीरा, करेला, चप्पन कद्दू, लौकी, इन सब्जियों की बिजाई हो रही है। और साथ ही खेतों में गेहूं और जौ की फसल की कटाई और भंडारण का कार्य भी लगा हुआ है।
1: जी, और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए भी किसान भाई अपने खेत जो है तैयार कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में मक्की है और उसके साथ जो है लगने वाली जो सब्जियां हैं उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। यह बहुत ही उपयुक्त समय है। हालांकि कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें किसान भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जी लगा ली होंगी। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में तो कई क्षेत्रों में सब्जियां तैयार भी हो गई होगी, लेकिन जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र है, उनमें इन दिनों जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, बेल वर्गीय सब्जियां हैं, वो उनके बीज लगाए जा सकते हैं।
0: जी,
1: तो हमारी बातों का जो सिलसिला है किसान साथी उसी तरह से जारी रहेगा। बहरहाल आपको बता देते हैं कि आज कार्यक्रम के पिटारे में आपके लिए क्या कुछ लेकर के आए हैं किसान साथियों। आज काम की बातों के तहत आपको जानकारी देंगे शिमला मिर्च की संरक्षित खेती इस विषय पर, और साथ ही साथ रोजाना की तरह लोकगीत से करवाएंगे आपका मनोरंजन और सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत।
0: जी, तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं काम की बातों के

0: अंतर्गत लिए गए विषय, जिसका विषय है शिमला मिर्च की संरक्षित खेती।
1: किसान साथियों, शिमला मिर्च हर घर में खाई जाती है और इसकी मांग जो है बाजार में हर समय बनी रहती है। ऐसे में यदि हम भी शिमला मिर्च को उगाते हैं, इसकी संरक्षित खेती करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाभान्वित जरूर होंगे। किसान साथियों, पॉली हाउस में शिमला मिर्च की यदि बात की जाए, इसे सबसे अधिक जो है पॉली हाउस ग्रीन हाउस में ही उगाई जाने वाली सब्जी है, जबकि टमाटर खीरा जो है इसमें दूसरे तीसरे स्थान पर आते हैं। और साथ ही पॉली हाउस के अंदर उगाई जाने वाली शिमला मिर्च बाहर खेतों में उगाई जाने वाली शिमला मिर्च से कई बातों में भिन्न होती है, जैसे इस फसल की उम्र, तुड़ाई का समय। इसलिए किसानों को अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता के फल हालांकि पॉली हाउस में ज़्यादा मिलता है और बेमौसमी होने के कारण उसमें ज़्यादा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। शिमला मिर्च उगाने के साथ साथ लागत भी कम होनी चाहिए। शिमला मिर्च की पैदावार पॉली हाउस के स्थान पर उर्वरकता, मौसम, पौधों की दूरी, पौधों को सहारा देने की विधि, किस्म, सिंचाई और उर्वरकों की मात्रा पर भी निर्भर करती है। शिमला मिर्च उगाने के लिए क्षेत्र और परिस्थितियों के अनुसार पॉली हाउस का डिजाइन भी तैयार किया जाना चाहिए, तभी सब्जी जो उत्पादन है किसान साथियों वो लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
0: किसान श्रोताओं, पॉली हाउस में शिमला मिर्च लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। इसके लिए आप नमूना लेने के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर पॉली हाउस के अंदर 8 से 10 स्थानों पर निशान लगा दें और इन स्थानों से घास फूस हटा दें। निशान लगे स्थान पर फावड़े या खुरपी से तिरछी काट लगाकर अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार का 6 इंच का गड्ढा आप खोद सकते हैं। गड्ढे कि आमने सामने की भुजाओं में 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत खुरपी की मदद से आप खुरच लें और 8 से 10 नमूनों को अच्छी तरह से मिलाकर लगभग आधा किलो मिट्टी का एक नमूना आप बना सकते हैं और इस नमूने को कपड़े की साफ सुथरी थैली में डाल दें। यदि मिट्टी गीली हो तो उसे छायादार स्थान पर आप सुखा लें।
1: किसान साथियों, जब भी हम कहीं भी पॉली हाउस लगाने जा रहे हैं और खेती अगर करने जा रहे हैं, तो नमूना एक सबसे अच्छी विधि है मिट्टी की जांच करने का। मिट्टी की जांच के बाद ही आप उस मिट्टी में उसकी गुणवत्ता, उसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, उसकी आप जानकारी आपको मिल जाती है, और ऐसे में कौन सी जो खेती है पॉली हाउस में वो बढ़िया रहेगी उसकी जानकारी मिल जाती है। किसान साथियों, एक कागज़ पर नमूने का पूरा विवरण लिख दे, जिसमें किसान का नाम, पॉली हाउस की पहचान, पिछली बार की गई जो फसल है, बिजाई जिसकी की गई थी, और पिछली फसल में डाले गए उर्वरक, उगाई जाने वाली प्रस्तावित फसल या मिट्टी में कोई विशेष समस्या हो तो उसकी भी जानकारी उसमें देनी होती है, और इस पर्ची को थैली के अंदर डाल दे और ऐसी ही एक पर्ची थैली की गर्दन पर बांध दे। इस जानकारी की एक प्रतिलिपि अपने पास भी जरूर रखें। किसान साथियों, पॉली हाउस से मिट्टी का नमूना फसल की कटाई के बाद और वर्ष में कभी भी आप ले सकते हैं। प्रत्येक पॉली हाउस का नमूना अलग से लें। यदि खड़ी फसल में नमूना लेना ही पड़ जाए तो सैंपल क्यारियों के बीच में से लें और मिट्टी का नमूना लेने के बाद उसे विश्वसनीय प्रयोगशाला से जांच करवाएं, और हर साल रिपोर्ट आने के बाद आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी, और जय, अगर हम बात करें शिमला मिर्च की किस्मों के बारे में, तो किस्में हमेशा वही चुनी जानी चाहिए जो ज्यादा बिकती हो। इस समय लाल तथा पीली सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली शिमला मिर्च की किस्म है। इसके अतिरिक्त बैंगनी, संतरी, भूरी रंग की शिमला मिर्च की किस्में भी उपलब्ध है। पॉली हाउस के अंदर हमेशा संकर हाइब्रिड किस्मों का ही आप प्रयोग करें। सामान्य तौर पर एक वर्ग मीटर में 22 से 35 किलोग्राम शिमला मिर्च का उत्पादन किसान श्रोताओं आप ले सकते हैं। अच्छे रंग के अलावा किस्म में रोगों और फल विकारों के प्रति प्रतिरोधकता होनी अति आवश्यक होती है। आजकल बाजारों में बॉम्बी यूएस 181 जो लाल किस्म है, ऑरोवेल जो पीली है, ये सारी किस्में आजकल बाजारों में उपलब्ध है। और किसान भाइयों, हरी किस्मों की अगर बात करें तो इसमें कैलिफोर्निया वंडर, पीली में ऑरोबेल, लाल में US 81 और बैंगनी जो किस्म है उसमें आप नोंगवू सीड्स भी ले सकते हैं।
1: किसान साथियों, ये तो बात हुई किस्मों की। किस्मों के बाद आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जो पौधरोपण का जो समय है वो कौन सा होना चाहिए। किसान साथियों, लंबे समय तक चलने वाली फसल के लिए मार्च महीने में पौधरोपण किया जा सकता है। इससे पहली पैदावार मध्य जून तक मिल जाती है। छोटे समय के लिए उगाई जाने वाली शिमला मिर्च के लिए

0: फरवरी में पौधरोपण करें और इसे जुलाई तक जो है अच्छी पैदावार मिलती है। उसके बाद मिट्टी का उपचार करके दोबारा जुलाई में पौधरोपण करें। यानी कि किसान भाइयों, आप जुलाई में दोबारा से पौधरोपण कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त में ज़्यादा तापमान और आर्द्रता पैदावार पर असर डालती है, लेकिन छोटे पौधों को बढ़ने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त मौसम माना जाता है।
1: किसान श्रोताओं, अगर बात करें नर्सरी उत्पादन और पौधरोपण व पौधों के अंतराल के बारे में, तो पौधरोपण के लिए पौधों को नर्सरी ट्रे, प्रो ट्रे में ही आप उगाएं, जिसमें कई भाग होते हैं। नर्सरी उगाने के लिए कोकोपीट माध्यम उपयुक्त है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अच्छी पौध लेने के लिए हर भाग में 2-3 बीज डालें। पौध निकालने पर हर भाग से केवल एक सबसे सेहतमंद पौध लें। 1 ग्राम बीज में 80 से 100 पौधे आप प्राप्त कर सकते हैं। पौधों को 6 पत्तों की अवस्था में आप रोपित करें, और पौधों में अंतराल सामान्य तौर पर पौधों को सहारा देने के तरीके पर निर्भर करता है। वी प्रकार के 4 तने वाले पौधों में 45 बाई 45 सेंटीमीटर, 2 तने वाले पौधों में 40 बाई 40 सेंटीमीटर, और स्पेनिश तरीके में 60 बाई 45 सेंटीमीटर के अंतराल में ऊंची क्यारियों को आप लगा सकते हैं। ये क्यारियाँ 15 सेंटीमीटर ऊंची, 1 मीटर तक चौड़ी हो सकती है, और क्यारियों में खरपतवार नियंत्रण एवं पानी के संरक्षण के लिए 40 माइक्रोन की काली प्लास्टिक मल्च का प्रयोग आप अवश्य करें।
0: किसान साथियों, नर्सरी उत्पादन के बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानकारी देते हैं सिंचाई और फर्टिगेशन की। किसान साथियों, पॉलीहाउस में उगाई जाने वाली रंगीन शिमला मिर्च में विकास अवस्था के अनुसार टपक सिंचाई द्वारा पानी की निर्धारित मात्रा का उपयोग करना चाहिए। ड्रिपर की प्रवाह दर 2 लीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और उसके बीच की जो दूरी होती है वो 50 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। टपक सिंचाई प्रणाली में प्रवाह दर की एकरूपता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए टपक सिंचाई के साथ आप पॉलिथीन मल्च 25 से 50 माइक्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा घुलनशील उर्वरकों को पौधों के जड़ क्षेत्र तक पहुंचना फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन के लिए मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग भी होता है। फर्टिगेशन की मात्रा की किसान साथियों बात की जाए तो वनस्पतिक वृद्धि अवस्था से लेकर के अंतिम तुड़ान तक वेंचुरी का प्रयोग करके हर तीसरे दिन सभी उर्वरक एक ही टैंक में घोले जा सकते हैं। फर्टिगेशन के बाद टपक सिंचाई की लेटरस को फ्लश करना और फिल्टर की सफाई करना आवश्यक हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण और नमी के संरक्षण के लिए 25 से 50 माइक्रोन की पॉलिथीन मल्च का अवश्य प्रयोग करें। मिट्टी में जैविक पदार्थों की उपयुक्त मात्रा मिलाएं। FYM 4 किलो प्रति वर्ग मीटर की दर से या वर्मी कंपोस्ट 2 किलो प्रति वर्ग मीटर की दर से आप डाल सकते हैं, ताकि मिट्टी में जो उर्वरता है वो बनी रहनी चाहिए। किसान साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पौधों को सहारा देना और कांट छांट की भी।
1: किसान भाइयों, शिमला मिर्च में 8 से 12 पत्तों के बाद एक मुख्य फूल बनता है, जहां से पौधा 2 या अधिक टहनियों में विभाजित हो जाता है। हर एक टहनी में 1 या 2 पत्तों के बाद फूल बनता है, जहां से वह फिर 2 भागों में बंट जाता है। इसी तरह पौधों की बढ़ोतरी होती है।
0: तो किसान साथियों, कार्यक्रम में हमने बात की शिमला मिर्च की संरक्षित खेती के बारे में और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। तो योगिता जी, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और किसान और बागवान भाई बहनों का मनोरंजन करवाते हैं एक पहाड़ी लोकगीत के साथ। आइए सुनते हैं बिशन दत्त शर्मा की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान श्रोताओं, विशन दत्त शर्मा की आवाज में ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत। और श्रोताओं, अब समय हो गया है जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का, जिसका विषय है पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय। इस विषय पर जानकारी देंगी रीना देवी और उनसे बातचीत करेंगी सुरेखा। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं ये जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण।
1: किसान बागवान श्रोताओं, लीजिए फिर हाजिर हैं लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रीना देवी, जो कि हैं एक कृषक, एक पशुपालक और साथ में हैं एक गृहिणी। तो आइए जानते हैं इनका परिचय इन्हीं की जुबानी।
2: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गांव का नाम हलोट, ग्राम पंचायत गहनी की मैं स्थायी निवासी हूँ।
1: किसान भाइयों, आज हम रीना देवी से बातचीत करने वाले हैं पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय इस विषय पर। तो इससे पहले कि हम इस विषय में विस्तार से जाएं, हम रीना जी से जानना चाहेंगे कि वो पशुपालन और खेतीबाड़ी के अलावा और कौन कौन से काम अपने गांव में करती हैं।
2: पशुपालन और खेतीबाड़ी, ये दो कार्य तो ऐसे है जो सभी महिलाएं अपने घर में, अपने गाँव में करती है, पर मैं इसके अलावा स्वयं सहायता समूह में भी कार्य करती हूँ। सब

0: छोटे स्तर पर प्राकृतिक कृषि भी कर रहे हैं जो कि शून्य लागत कृषि है। यदि हमें प्राकृतिक कृषि करनी है तो हमें इसके लिए पहाड़ी गाय घर पर रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके गोबर और गौमूत्र के बिना प्राकृतिक कृषि संभव नहीं है।
1: जी, यानी कि रीना जी, आप अपने घर पर ही, गांव पर आप सभी महिलाएं मिलकर पहाड़ी गाय के गोबर, गौमूत्र से बहुत सारे कीटनाशी रसायन बनाती होंगी, बहुत सारे रोगनाशक मिश्रण बनाती होंगी।
0: बिल्कुल जी।
1: तो हम अगर बात करें पशुपालन की, आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी कि पशुपालन किस तरह से लाभकारी व्यवसाय है ये?
0: पशुपालन से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यदि हम दूध व्यापार करना चाहते हैं तो हम इसका आंकलन जो है वो अलग करते हैं। बैल है और जो बांझ पशु है, इन पशुओं का लाभ की गणना हम थोड़ा अलग रूप से करते हैं।
1: पशुपालन में जब बात आती है तो मुख्य रूप से हमारे सामने आता है दुग्ध उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है एक अच्छी नस्ल की गाय या भैंस की। तो अच्छी दुधारू गायों के बारे में आप थोड़ा बताएं।
0: जो हमारी अच्छी नस्ल की गायें हैं, जिनको कि हम आसानी से पाल सकते हैं, जो कि है साहीवाल है, रेड सिंधी है, जर्सी है, हॉस्टन है, इनकी जो दूध देने की क्षमता है वो अधिक होती है। परंतु जो हमारी पहाड़ी गायें हैं, उसकी जो दूध देने की क्षमता इनके मुकाबले कम है, लेकिन वो दूध बहुत गुणवत्तापूर्ण होता है।
1: अगर आप दूध उत्पादन कर रहे हैं या दूध का व्यवसाय कर रहे हैं तो कितना फायदा हो सकता है एक दूध उत्पादक को?
0: जो हम बात करेंगे अब साहीवाल, रेड सिंधी और जर्सी हॉस्टन गाय, जिनकी क्षमता अधिक है दूध देने की, तो अगर हम दो गाय अपने घर पे पाल लेते हैं, अगर हमारी एक गाय 10 लीटर दूध हमें प्रतिदिन का देती है, तो ये देखो कि आप आजकल जो हमें दूध की मांग है वो 60 रुपये प्रति लीटर है दूध की मांग। तो ये घर बैठे हमारा जो किसान है वो बहुत अच्छी से दूध जो है वो बेच सकता है
1: जी
0: और एक अच्छी आय से हम प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दूध के अलावा अगर आप गाय का गोबर भी बेचना चाहें तो वो भी एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है कि नहीं?
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। अब दूध हम ले रहे हैं, चारा हम दे रहे हैं, तो गोबर भी गाय देती है, जो हम आसानी से, ये इसकी भी मांग बहुत है होती है। जो हमारी एक गाय है 600 रुपये का तो हमें वो दूध देती है,
1: जी
0: और 100 रुपये का हमें एक दिन में वो गोबर देती है, तो वो 700 रुपये का जो लाभ हमें एक दिन का आ जाता है। अगर हम दो गाय पालते हैं तो दो गाय का हमारा ये है कि 1200 हमें दूध का आता है उसका, और जो हमारा 200 है वो गोबर का आता है, 1400 ये हो गया। लेकिन कुछ खर्च भी हमें करना पड़ता है, गाय के लिए हमें कुछ खिलाना भी है, तो 200 रुपये जो ऐसा उसका खर्च है गाय का, जो दाना चोकर पे आता है प्रतिदिन का, वो भी हमें इसमें लग जाता है थोड़ा।
1: जी और रीना जी, आपका क्या विचार है कि अगर घर बैठे ही आप खाद बेचें या फिर खाद का जो है अच्छा इस्तेमाल करें तो उससे आप जो है लाभ किस तरह से कमा सकती हैं?
0: घर बैठे हम गोबर बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें बेचना ही है, कोई बात नहीं, हम नहीं भी बेचते तो उससे हमें जो अपने घर का गोबर है, गली सड़ी हमारी, उससे देसी खाद बनती है, जिसे हम अपने कृषि उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं, और हमें इससे ना एक अच्छा लाभ प्राप्त होता है इससे।
1: जी, किसान भाइयों, अगर आप गाय खरीदना चाहते हैं और आप घर पर ही व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है एक गाय खरीदना और कितना जल्दी जो है वो लाभ देना शुरू कर देती है, जानते हैं रीना जी से? रीना जी बताएं।
0: दुधारू गाय यदि हम आज खरीदते हैं तो आज ही हमें वो लाभ देना शुरू कर देती है। अन्य व्यवसाय जो है, जैसे कृषि है, बागवानी है, हमें अगर करना चाहे उसे, तो उसका लाभ हमें 6 महीने बाद प्राप्त होता है। लेकिन गाय का ये है कि आज खरीदी, आज वो दूध देगी, हम आज ही दूध अपना बाजार में बेच सकते हैं।
1: जी
0: दूध के फायदे तो सभी जानते हैं, ये बताने के लिए मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि हमारे पास शुद्ध दूध अपने घर का होता है। मार्केट से दूध मिलता है पर बहुत मिलावटी
1: जी
0: होता है, ये सब जानते हैं।
1: जी
0: घी अपने घर का होगा वो शुद्ध होगा, लस्सी होगी जो जिसे हम ग्रहण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य निरोग रहेगा, हमारे बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होगा।
1: जी बिल्कुल। कुपोषण से भी काफ़ी हद तक जो है छुटकारा मिल सकता है और हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी क्योंकि दूध में भरपूर कैल्शियम हमें मिलता है। रीना जी, एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल विदेशी नस्लों की गायों का प्रचलन बहुत है और जो पहाड़ी गाय हैं या देसी नस्ल की गाय हैं वो लगभग दृश्य से गायब ही हो गई हैं, तो आप क्या ऐसा कहना चाहेंगी, क्या हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगी जिससे कि दोबारा से पहाड़ी गाय या देसी नस्लों की गाय पालना शुरू कर दें?

0: ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा है। आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारी ये पहाड़ी गाय है ये तो बिल्कुल गायब हो चुकी है, ये तो सिर्फ हमें सड़कों में दर दर भटकती हुई दिखती है,
1: जी
0: किसी के यहाँ आंगन में बंधी हुई नहीं दिखती। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है अगर हमारी पहाड़ी गाय जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है, ये हमें पालना बहुत जरूरी है। इनके जो गौमूत्र है, कहते हैं ना, उसे घर में अगर छिड़का दिया जाए तो
1: जी
0: हमारा जो पूरा परिवार है, पूरा घर है, वो शुद्ध हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: और जो इनका गोबर है, आज हम प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं, प्राकृतिक कृषि तभी की जा सकती है जब हमारे पास पहाड़ी गाय होगी। पहाड़ी गाय के गौमूत्र गोबर से प्राकृतिक कृषि की जा सकती है। और पहाड़ी गाय को जो पालना है वो इतना मुश्किल काम नहीं है।
1: जी
0: साहीवाल, हॉस्टन, जर्सी की जो ये है, इनका अलग बात है, दूध देने की क्षमता अधिक है। लेकिन जो हमारी पहाड़ी गाय है वो छोटी है, इनका आहार भी कम लगता है, और दिन में तो ये चरने चली जाती है, आसानी से चल लेती है इधर उधर,
1: जी
0: अपना भरण पोषण खुद ही कर लेती है। और जब मैंने जंगलों में ये चरने जाती है, अपने आप चर के, ये बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी है जो ये ग्रहण करती है, और जब हमें ये दूध देती है तो उनका जो सारा पौष्टिक तत्व है वो हमें प्राप्त होता है।
1: जी बिल्कुल। देखें किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात रीना जी ने कही है कि भले ही पहाड़ी गाय थोड़ा दूध दे, लेकिन जितना देती है बहुत गुणकारी और लाभकारी होता है, क्योंकि ये मौसम के अनुसार वनस्पतियां चरती हैं और उसी हिसाब से जो है हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी विचार करना चाहिए, पहाड़ी गाय दोबारा से पालना शुरू कर दे। देखिए, गाय की बात हो गई है, गाय पालने का जो है सभी को शौक भी है, और एक लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो गौ पालन एक अच्छा विकल्प है। लेकिन बैल, बैल के बारे में आपका क्या विचार है आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पर बैलों की जगह ट्रैक्टर या आधुनिक उपकरणों ने ले ली है, आप इस बदलाव को किस नज़र से देखती हैं?
0: ये जो आपने बात की है ट्रैक्टर की, ये बदलाव हमारे वैज्ञानिक तौर पर आया है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन हमारा, मेरा जो मानना है वो तो यही है कि खेत जुताई के लिए बैल से जुताई करना अच्छी, मतलब बहुत अच्छा होता है। और जो ये कार्य प्राचीन काल से किया जा रहा है, तो जो बैल से जुताई मानी जाती है वो ही सर्वोत्तम जुताई मानी जाती है।
1: जी, बिल्कुल। साथ ही गाय के अलावा बहुत सारे बछड़े, बैल इत्यादि भी जो है सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित सी बात है। तो रीना जी, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
0: दुर्भाग्य की बात पर यह है कि आज जो पशुधन है वो सड़कों में, गलियों में, शहरों में दर दर भटकते हुए देखा जा रहा है। इन पशुओं की हालात को अगर हम देखें तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो एक गौ माता है जो पूरा जीवन हमें दूध देती है, हमारे परिवार को पालती है, हमें पालती है, दूध घी देती है, पर जब वो किसी मतलब कारणवश बांझ हो जाती है या मतलब अन्य कोई कार्य करने योग्य नहीं रहती, तो जो पशुपालक मेरे भाई और बहन हैं वो उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। मेरी तो, मेरे सभी पशुपालक भाइयों बहनों से यही प्रार्थना है कि हम पशुधन का संरक्षण करें, गौ सेवा से बढ़कर अन्य कोई सेवा नहीं है। आज लिखा पढ़ा जो युवक युवतियां है वो शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, परंतु हम आकलन करें और पशुपालन में रुचि रखें तो पशुपालन से बढ़कर अन्य कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं है।
1: जी बिल्कुल, बढ़िया बात आपने कही है कि निश्चित ही जो हमारे युवा है, युवा वर्ग है, वो नौकरियों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं और नौकरियां ना पाने के कारण जो है अवसाद के शिकार भी होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप घर पे, गांव पे रहकर ही व्यवसाय करें, कृषि बागवानी करें, बहुत सारे काम जो है आप घर पर कर सकते हैं, प्रकृति के बीच में रहकर, अपनों के बीच में रहकर एक अलग ही बात होगी।
0: बिल्कुल जी, आप थोड़ा सोचिए कि अगर पशुधन नहीं है तो हमारी कृषि नहीं है, बागवानी नहीं है, दूध घी दही लस्सी आदि नहीं है, तो हमारा जीवन स्वस्थ नहीं है।
1: जी
0: पशुपालन हमारे लिए सर्वोपरि है। जब हमारे पास दूध घी है तो हमें कहीं बाहर से मतलब खरीदने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं होती है, हमारे पास घर बैठे अच्छा एक रोजगार है जो हम कर सकते हैं।
1: जी
0: यदि हम इसे व्यापारिक रूप में करना चाहें, पशुओं के लिए हमारे पास गांव में हरा चारा प्राप्त होता है, हमारे पास खेत है, हम अपनी खेती में पशु आहार तैयार कर सकते हैं, अनाज लगा सकते हैं, पशुपालन में दिल लगाकर कार्य करना और इनकी सही देखभाल करना, ये आज की मांग है।
1: जी बिल्कुल रीना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर पशुधन नहीं है तो हमारी

0: है, हम नहीं हैं, साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी नहीं है। तो निश्चित सी बात है कि पशुपालन जो है एक लाभकारी व्यवसाय तो है ही, लेकिन समय की मांग भी है, प्रकृति की मांग है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आप रीना देवी जी के विचारों से सहमत होंगे और प्रभावित भी हुए होंगे, क्योंकि ये कृषक हैं, पशुपालक हैं, गृहिणी हैं और एक माँ भी हैं। तो इन्होंने जो है सारे अनुभव अपने साझा किए आपसे। तो रीना जी, आप स्टूडियो में आए और इतने अच्छे विचार आपने हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय था पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय। कार्यक्रम में अधिक जानकारी दे रही थी रीना देवी व उनसे बातचीत कर रही थी सुरेखा। और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। युक्ता जी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए किसान और बागवान भाई बहनों के मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं प्यारा सा समूह गान।

0: किसान भाइयों, शंभू स्वरों में ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत। किसान श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत का समय यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान और बागवान श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आपने सुना कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 MHz पर। आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
4: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
5: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
4: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मना रहे हैं जश्न। कांग्रेस ने 47 में से 32 और भाजपा ने 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल करने का किया दावा। केंद्र सरकार ने कहा देश भर में पेट्रोल डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी। देश भर से अनेक कलाकार ले रहे हैं भाग। और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे सैब सोसाइटी के 800 कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कुल 47 नगर निकायों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है और समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि भाजपा ने 47 में से 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 22 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ चुका है।
1: 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते। पार्टी के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश इस बात को लेकर के, क्योंकि जो कैंडिडेट

0: चुनाव लड़ता है उसको मालूम पड़ जाता है कि किस पार्टी से संबंध रखता है। पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है। प्रभाव का इस्तेमाल करने की अगर वो कोशिश करेंगे उसमें भी वो एक्सपोज होंगे।
1: शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
2: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय व सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल को कौशल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज शिमला में विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु उद्यम और स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। राजेश धर्माणी ने बताया कि विद्यार्थियों के ज्ञान संवर्धन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों व कृषि महाविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठा रही है और सभी राज्यों में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में बताया कि पिछले लगभग 2.5 महीने से पश्चिमी एशिया संकट जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इसके कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के दामों में वृद्धि हुई है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शिक्षा और इतिहास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कांगड़ा की एसडीएम शिल्पी बेगटा ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देश भर से आए कई जाने माने कलाकारों ने लगभग 50 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को हर कलाकार की रचनात्मकता व कला देखने को मिल रही है।
4: मेरा नाम मनप्रीत है, मैं लुधियाना से आई हूँ। टोटल आई थिंक मोर देन 45 पेंटिंग्स हैं सबकी मिला के और सबका अलग अलग काम है, अलग अलग कहते ना हर किसी का अपना अलग हाथ होता है, अपना अलग अलग क्रिएटिविटी या अलग अलग काम है और सबने बहुत मन से काम किया, बहुत एफर्ट दिए हैं अपना यहाँ पे लाके लगाने के लिए।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए गोयल ने कहा कि

0: आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए और सभी को बिना थके लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदायों और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: राजधानी शिमला में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। इस हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने शिमला में

0: हुए मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: राजधानी शिमला में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। इस हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि सोसाइटी के लगभग 800 कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
2: हमारे कर्मचारी जो अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं और ये एस्मा चलो डीसी साहब ने लगा दिया, मगर डीसी साहब को हमने भी कई बार मांग पत्र दिया। डीसी साहब ने आज तक 4 साल में कोई भी वार्तालाप हमारे निगम प्रशासन से नहीं करवाई है। साफ साफ कर्मचारियों के विरुद्ध में पूरा प्रशासन बैठा है। अभी तो हमारी कोई बात प्रशासन से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है। अभी जब तक कॉल नहीं आती है तब तक हमारी स्ट्राइक है जो कंटिन्यू ही जाएगी।
1: केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में आज एक व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, भीषण गर्मी के समय धूप में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसमी फलों तथा इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर बल दिया गया है। लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरे के लक्षणों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, उच्च तापमान, निर्जलीकरण, दौरे और बेहोशी के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से मुलाकात की। इस दौरान नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पारंपरिक चिकित्सा, AI आधारित जन स्वास्थ्य नवाचारों और TB उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयासों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मना रहे हैं जश्न। कांग्रेस ने 47 में से 32 और भाजपा ने 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल करने का किया दावा। केंद्र सरकार ने कहा देश भर में पेट्रोल, डीजल व LPG की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी। देश भर से अनेक कलाकार ले रहे हैं भाग। और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे सहब सोसाइटी के 800 कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ।

हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में टाइम हुआ है रात्रि के 8 और एफएम शिमला पर ये वक्त रहता है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। खो जाते हैं जो अल्फाज, बन जाते हैं वो गीत, सदियों तक गूंजते हैं ऐसे होते हैं संगीत। तो चलते हैं हम पुरानी यादों के झरोखे में और सुनेंगे वो सदाबहार नगमे जो आज भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं। तो लीजिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कोहिनूर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और लता मंगेशकर ने, संगीत नौशाद का और बोल शकील ने लिखे हैं। ये एक बेहद रोमांटिक और सुकून देने वाला गीत है जो उस ज़माने के बेहतरीन संगीत और गायकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो लीजिए आप सब भी इंजॉय कीजिए इस गाने को और यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गाना लीजिए, अब सुनिए जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आपने सुना अनाड़ी फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

भोले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तीन देवियां फिल्म का गीत।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: ये था मेरे सनम फिल्म का गाना आशा भोंसले की आवाज में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ.
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है.
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा. 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें.
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी. तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक. पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें.

इसी गाने के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर FM शिमला।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और एंजॉय कर रहे हैं फिल्म संगीत।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाए इसी सॉन्ग के साथ फिल्म संगीत में आज के लिए इतना ही। फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 के लिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान,

0: डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि

0: वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए

0: भारत से देवी सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
3: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
2: Prime Minister Modi said, the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
3: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था,

रात्रि के 9:15 हुए हैं। एफएम शिमला पर अब आप सुनेंगे एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है दिल। जी हाँ लिसनर्स, ये 1990 की एक बहुत लोकप्रिय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन इंदर कुमार ने किया था। आमिर खान और माधुरी दीक्षित की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म अपने समय की ब्लॉकबस्टर हिट थी और इसके गाने आज भी दर्शकों के पसंदीदा है। तो लीजिए आप भी इंजॉय कीजिए दिल मूवी का के इस सॉन्ग को और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 MHz पर।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिल फिल्म में आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और साईद जाफरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। आपको बता दें, माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसे 1993 में तेलुगू और 1997 में कन्नड़ में भी बनाया गया था। फिल्म का संगीत आनंद मिलंद ने दिया था और गीत समीर और फिल्म के जो बोल और जो गीत के बोल है वो समीर ने लिखे थे।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में टाइम हुआ है रात्रि के 9:30 और एफएम शिमला पर अब आप एंजॉय करेंगे दिल की आवाज भी सुन प्रोग्राम। लीजिए सुनिए प्रोग्राम का फर्स्ट म्यूजिकल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलाखें, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। एंजॉय कीजिए और यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं दिल की आवाज भी सुन प्रोग्राम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या मूवी से, आवाज है उदित नारायण की।

लीजिए अब सुनिए जल्लाद मूवी का सॉन्ग उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दिल की आवाज भी सुन।

दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं। साजन की बाहों में फिल्म से आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 10 बजे हैं एफएम शिमला पर। अब आप सुनेंगे गजलें।

कुछ बातें जो लफ्ज़ों में बयां नहीं होती वो गज़लों के धागों में पिरोई जाती है। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत पंकज उदास की इस गज़ल के साथ।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। रात्रि के 10:30 हुए हैं। FM शिमला पर अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे।

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

ای هو راده شام کی جای هو سیارام کی اور جای هو بمبئی دھام کی।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: देखो यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो।
1: इसी गाने के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 11 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम शिमला। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आप सभी से फिर भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद।